0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

जब भी हम अपना जीवन साथी सुनते हैं, अपना लाइफ पार्टनर चुनते हैं, तो हम किस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखते हैं? यही ना कि वो डैशिंग होना चाहिए, है ना, स्मार्ट होना चाहिए, ऐसा हो जिस पर सबकी निगाह टिक जाए, गोरा हो, सुंदर हो, स्मार्ट हो, हैंडसम हो, डैशिंग हो, मतलब बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर जो एक फीचर है उसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, और इसीलिए शायद अक्सर शादी के बाद या एक रिलेशनशिप में आने के बाद, जीवन साथी चुनने के बाद आप अक्सर परेशान होते हैं, रोते हैं। देखिए, पूरे 36 के 36 गुण तो दो लोगों में साथ नहीं हो सकते, एक जैसे नहीं हो सकते, है ना, कुछ तो ऊपर नीचे रहता है, लेकिन हम फिर भी एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ट्राई कर सकते हैं उसके बारे में, और वो है उसका नेचर, उसका बिहेवियर, वो कैसे स्वभाव का है ना। देखिए, उसकी ब्यूटी जो है, चाहे मेल है चाहे फीमेल हो, कितना भी डैशिंग, वो 4 दिन रहेगा और उसके बाद उसका जब असली चेहरा सामने आता है तो अक्सर आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। सो इट्स बेटर कि बाकी चीजों से ऊपर आप एक इंसान का कैरेक्टर, उसका बिहेवियर देखें, और ये समझें कि वो इंसान वाकई जिंदगी में आपका साथ निभाने के लिए सही है कि नहीं। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ सुनिए और मेरे साथ एंजॉय करते रहिए। इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी 107.01 AM पर।

अच्छा, अपन सुन रहे हैं आप, जी हाँ, आपके ब्रेकफास्ट शो को आप इंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ, और इंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ मॉर्निंग के कुछ ऐसे बेहतरीन गाने जो इस मॉर्निंग की एनर्जी को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। अच्छी तरह से जीना, वैसे क्या मतलब होता है इस अच्छी तरह से जीने का आपकी नजर में? बहुत सारे लोगों को लगता है कि अच्छी तरह से जीना यानी वेल मेंटेन्ड अपनी लाइफ को जीना, इसका मतलब है कि आपके पास ऐशो आराम होना चाहिए, आपके कंफर्ट की हर चीज होनी चाहिए और ऐसा कुछ भी ना हो जो आपके पास नहीं हो। बल्कि देखा जाए तो हमारा ये सोचना कि ऐशो आराम से जीना, अच्छी तरह जीना होता है, ये मतलब ही गलत है। एक्चुअली अच्छी तरह जीने का मतलब है कि अगर आप किसी पत्थर पर भी बैठे तब भी आप हैप्पीनेस फील करें अपनी लाइफ में, आप खुश रहें और आप के अंदर स्ट्रेस ना। आज की जो लाइफ स्टाइल हमारी है, बहुतों के पास बहुत पैसा है, ऐशो आराम की जिंदगी है, बट स्टिल वो अपनी लाइफ को अच्छी तरह नहीं जी रहे हैं, वो अपनी लाइफ में खुश नहीं है। तो लाइफ की हैप्पीनेस जो है वो बेसिकली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। आइए फिलहाल एक और ट्रैक के साथ आपको आगे लेकर चल रहे हैं, इसे सुनिए एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिजवाणी सताक्षी के साथ। जी हाँ, सताक्षी के साथ हैं आप और मेरे साथ सुन रहे हैं आपके ब्रेकफास्ट शो को।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

बार लाइफ में ऐसा होता है कि आपके हाथ आया मौका किसी और के हाथ चला जाता है, या फिर ये कहें कि कई बार आज की जिंदगी में ऐसा भी होता है कि कोई जबरदस्ती आपसे वो मौका छीन कर ले जाता है। बट अगर मैं कहती हूँ जब ऐसा होता है तो आपको जरूर तकलीफ होती होगी, और होनी भी चाहिए। मतलब जेन्युइन है कि यार जो चीज हमें मिलनी थी और हमें लग रहा था कई बार कि वो चीज हमारी ही है और कोई और हमसे ले जाए, तो तकलीफ तो डेफिनेटली होती है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी देर रुक कर अगर आप सोचें तो तकलीफ उतनी होनी नहीं चाहिए। अगर कोई हाथों से छीन कर ले भी जाए तो भी अफसोस मत कीजिए, क्योंकि अगर आपकी तकदीर में वो चीज लिखी है कि आपको मिलनी है, तो कोई आपसे लाख छीन ले, किसी और के हाथ में जाकर भी वो आपके पास वापस आ जाती है, क्योंकि वो आपकी तकदीर की लिखी चीज है और तकदीर का लिखा मिटता नहीं है। जी हाँ, जो आपको मिलना है वो तो आपको मिलकर ही रहेगा, है ना। तो बस इसीलिए कह रही हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ कि कोई चीज जो हमें चाहिए लाइफ में वो हमारे हाथ से निकल जाती है और हम परेशान हो जाते हैं। बट अगर ऐसा होता है तो ये मान लीजिए कि या तो वो चीज़ आपकी थी नहीं, आपके नसीब में नहीं थी, और अगर थी तो आएगी आपके पास, लौट कर वापस आएगी। फिलहाल चलिए एक और ट्रैक सुनिए सताक्षी के साथ, और यूं ही सुनते रहिए इट हैपेंस आपके अपने रेडियो ब्रसवानी पर।

0: आपको कुछ गलत कह देते हैं या आपके साथ मिसबिहेव करते हैं। और ऐसा कभी कभी इसलिए होता है क्योंकि इंसान बहुत स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा परेशान है और वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, ये कई बार उस गुस्से में या उस स्ट्रेस में उसे समझ में नहीं आता। बट अगर कहते हैं ना कि वो एक अच्छे खानदान का है, क्योंकि मुझे भी लगता है कि खानदान या उसको परवरिश कैसी मिली है ये बहुत डिपेंड करता है कि एक बंदे का आपके साथ बिहेवियर कैसा है। सो अगर कभी स्ट्रेस में या कुछ प्रॉब्लम में इंसान ने आपको कुछ कह भी दिया तो जैसे ही उसे ये रियलाइज होगा कि उसने गलत किया है वो तुरंत अपनी गलती पर शर्मिंदा भी होगा, वो इंसान आपसे माफ़ी भी मांगेगा। लेकिन अगर एक इंसान का नेचर ही ये है, वो ऐसे ही बात करता है लोगों से और आपसे वो झूठ बोलता रहा है अपने नेचर को लेके, तो कभी उसे अपनी गलती रियलाइज भी नहीं होगी, उसे रियलाइज ही नहीं होगा कि उसने गलत किया है। वो उस गलती के लिए भी या उस कहे के लिए भी या उस मिसबिहेव के लिए भी आपको ही दोष देगा। और अगर आप फिर भी उसके साथ रहते हैं तो फिर गलतियां, कई बार होता है ना कि गलती हमारी है, उसका दोष हम दूसरे के सर नहीं डाल सकते। कई बार एक इंसान के साथ रहना ही हमारी सबसे बड़ी गलती है उसके बारे में सब जानते हुए। एक और ट्रैक सुनिए, आइए और मेरे साथ यूं ही सुनते रहिए इट हैपेंस आपके अपने रेडियो प्रिस्वानी 1701 ऐप पर।
1: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो।

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 Soccer Tournament presented by Queensland Fiji Football Association. Due to the rainy weather, QBOG ka Sunday 31st May game postpone ho gaya hai. Ab games honge Thursday 4th June se Sunday 7th June tak aur finals Sunday 14th June ko hoga at Acacia Ridge Soccer Club, 174 Mortimer Road, Acacia Ridge 4110. Ground pe chalega full soccer ka tashan. Opens, masters and legends. Har match mein energy, excitement aur crowd ka shor. Aur bhai, khane ka scene to aur bhi dangerous hai. Fiji style barbecue, spicy duck curry, yummy pulao aur thandi thandi Fiji ice block. To in dates par ghar par mat baithna. Family, friends ke saath aa jana QBOG Soccer Tournament 2026 mein. ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: Wow. Yeah.

लाइफ में ना सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है, मतलब मस्ट मस्ट चीज है आपकी लाइफ का, सेटिस्फेक्शन होना ही होना चाहिए। और जिनकी लाइफ में नहीं है वो जिंदगी में कुछ भी मिल जाए कभी सेटिस्फाई रह भी नहीं सकते, क्योंकि उनके पास संतुष्टि नाम की चीज है ही नहीं, वो सेटिस्फाई रह ही नहीं सकते। एक फकीर ना हमेशा उसका पेट नहीं भरता है, लेकिन फिर भी वो जिंदगी में खुश रहता है, दुआएं देता है लोगों को। और बादशाह या किसी देश का राजा या किंग, उसका सब कुछ है उसके पास में, क्या नहीं है, लेकिन फिर भी वो लाइफ से सेटिस्फाई नहीं रहता। उसे कभी और कुछ चाहिए, कभी उसे क्या चाहिए यही उसे नहीं पता, है ना। तो ख्वाहिशें तो देखिए कभी पूरी नहीं होंगी, लेकिन सेटिस्फैक्शन लाइफ का हिस्सा जरूर होना चाहिए। और उसी सेटिस्फैक्शन के नाम ये अगला ट्रैक आपके लिए प्ले कर रही हूँ, इसे एंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ यूं ही सुनते रहिए इट हैपेंस आपकी अपनी रेडियो ब्रिस्वानी पर।

वेल फ्रेंड्स, ये था एक और इट हैपेंस पर सताक्षी का आज आपके साथ साथ। आज हमने फिर से कुछ गहरी बातों को समझा, जाना और जिया, और कुछ और गहरी बातों को जानेंगे कल के सफर में। आज के सफर से, आज के इट हैपेंस से अब लेती हूँ इजाजत। हैव अ ग्रेट डे एंड यस ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: जा रही हूँ।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम। लाइव Under the Stars, Tarun Raniga, Ricky from Sydney और Diman Roy लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 या फरजाना को 0401-428-248 पर। Log on to brisbane.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शन पर। डोंट मिस इट।
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just
4: earn
3: a number,
4: money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it bin coin. Save, spend or donate your bin coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
5: I. So the museum.

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। तुसी बड़े हो जी थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 FM ते जी आरचे संदेश शौलक दे नाल तुसी बन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत ही ज्यादा सोहना च वेला शुरू हो चुका है जी। ते इस वेले दे दौरान असीं गल्लां तां करनियां ही करनियां ने, नालो नाल इन्हां गल्लां नूं असीं पंजाबी गीतां दा तड़का भी जरूर लगाउणा है। तुसी की कहना है, तुसी जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बसवानी 101.1 FM साडा फेसबुक पेज है जी ते bisswani@bisswani.com साडी ईमेल आईडी है। जरिया जिहड़ा तुहानूं चंगा लगदा है तुसी ओ अपनाओ, पर साडे नाल गल्लबात जरूर करो। फटाफट दे नाल अपना फोन चक लो, जुड़ना शुरू कर दो, अपनियां फरमाइशां भेजो या करो दिल दियां गल्लां। जिवें भी जुड़ना है ओ जुड़ो ते नवें पुराने गीत मैं तुहानूं सुणाउंदी रहूंगी। अज्ज इक बेहद खास जी गल करनी है तुहाडे नाल करूंगी, पर पहले गीत सुनो।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो या फिर जिस किसी संस्था या विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देण वाली फिल्म है चढ़दी कला।
3: देखो सच बता दो।
4: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
2: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज़ होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
5: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid ul Azha, May 27th.

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो, कोक स्टूडियो भारत ने ना अपना नवा गीत कचौड़ी गली जा तो रिलीज किया है ना, हर कोई इसे गाने की गल कर रहा है। भोजपुरी लोक गीत का सब तो सुंदर मनिया जाने वाला यह गाना रेखा भारद्वाज ने गाया है। गाने का नवा वर्जन कचौड़ी गली हर किसी की जुबान से छाया होया है जो लोग संगीत ते आधारित है। इस बार शो ने भोजपुरी दी लह विच बनारस दी गलियां दी धुन प्रस्तुत की है। एक सदी तो भी वध पुरानी कचौड़ी गली गाने नू रेखा भारद्वाज ते बिहार दे इंडी लोक गायक उपल उदित ने गाया, निशांत नागर ने इस नू तैयार किया। ये गाना ना एक अजिहे समय ते कहानी नू पुनर्जीवित करता है जो कदे होया करता सी। एक अजिहे गाने नू जो एक सदी तो वध समय दी परंपरा दसदा है। ते अज इस गाने दी पूरी कहानी मैं दसदी हैगी आ तुहानू कि किवें किस दौर दे विच लिखिया गया सी, की कुछ होया सी, इस शुरुआत किवें सी। इस दी शुरुआत इस लाइन नाल हुंदी है कि सेजिया पे लोटे काला राग। बड़ा सोहना जिहा गीत हैगा, तुसीं जरूर सुनियो, पर मैं तुहानू इस दी कहानी मैं सुना दिंदी हां। गीत तुसीं यूट्यूब ते जरूर सुनियो।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो, तो हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनु असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नु बचा के रखो, खर्चो जा फिर जिस किसी संस्था जा विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नु दान विच दे दियो। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101 एम ते जी आर चे संदेश अलग दराल से बने हुए हो। देखो कचौड़ी गली गीत ते बनारस का कनैक्शन यदा हर कोई जानना चाहता है ना कि कचौड़ी गली दियाँ यादा तो खैर सब दियाँ इस गीत बाद ताज़ा हो ही गई। तो मैं दस दिनी हाँ, देखो वाराणसी की कचौड़ी गली जो अज भी मौजूद है, एक काशी विश्वनाथ मंदिर के कोल लाहौर टोला नाम के इलाके विच स्थित एक संकरी गली हैगी है। इस गली का नाम वड्डी कहाड़ी के कड़ाही विच तली जाने वाली मशहूर पूरी कचौड़ी के कारण पिया हैगा। तो यह कदे स्वतंत्रता सेनानियां शिक्षावादियों कलाकारां दे बैठण दा ना ठिकाणा होया करदी सी। जो इत्थे चाह ते कचौड़ी दे नाल राजनीतिक संस्कृति ते चर्चा करन दे लई इकट्ठा होया करदे सी। इस तो इलावा आम तौर ते व्यंग नाल भरे भोजपुरी संगीत तो हट के एक गाना भोजपुरी लोक गीत भी हैगा है।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: तू पक्के तौर ते साडा हो जांदी।
1: हाँ जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो सोनी 101.1 ते चार छे संदेश अलग दराल से बने हुए। अगली जिहड़ी गल हैगी है वह है तवायफ गौहर जान दी। गौहर जान प्यार विच दर्द चो गुजरी सी, यह कहा जाता है, तो कहा जाता है कि कहानी कितने ना कितने उसकी है। मनिया जाता है कि यह कजरी यानी कि मानसून विच गाया जाण वाला एक लोक गीत 19वीं शताब्दी विच बनाया गया सी। ए गीत एक औरत दे विरह दे दर्द नू बयां करता हैगा। इस औरत नू तवायफ कहंदे हैगे लोग, सानू नहीं पता कहंदे हैगे ने, रिपोर्ट्स कहंदियां ने। कई रिपोर्ट्स मुताबिक ना यह कहानी लगभग 200 साल पहला किसी गौहर जान दी सी, जो बनारस दी दाल मंडी विच रहंदी सी ते एक तवायफ सी। अजिहा मन्निया जांदा है कि वह कचौड़ी गली विच अपनी पालकी विच घूमण जांदी सी ते चौक दे कोलो गुजरदे समय ना जदों लंघदे समय ना उन्होंने असलम नाम दा एक आदमी उन्होंने मिलिया सीगा। उत्थों ही तां कहानी शुरू हुई सी, दसदी हां उस बारे होर ज्यादा डिटेल्स दे विच, पर पहला सुनो एक गीत।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: हाँ जी जी अनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 FM ते। जी आर जी संदेश अलग दे नाल तुसी बने हुए हो। देखो, बनारस की तवायफ गौहर जान का प्यार हुण इसकी गल करनी तो बनती बनती है। देखो जे गल करिए ना, उन्हां नाल कोई गलबात नहीं हुई पर उन्हां ते लट्टू सी। कौन ओ जिन्हां दी गौहर जान दी गल चल रही हैगी है ते जिस इंसान नूं मिले सी, मैं पहला दस्या सी ना नाम, नाम सी असलम ते लट्टू सी ते उन्हां दे गहरे प्यार करन लगी सी। एक दिन ना बहुत डूंघा प्यार, एक दिन ओ गायब हो गए। पुछताछ करन ते उन्हां नूं पता चलिया कि ओ मिर्जापुर काम करन गए हैगे ने, इसलिए गाने विच उन्हां दा जिक्र हैगा। दिल्ली स्थित भोजपुरी संगीत अते साहित्य दे विशेषज्ञ जिहड़े माहिर हैगे ने निराला विदेसिया, ओह कहिंदे ने कि बहुत बाद विच उन्हां नूं पता लग्गिया कि अंग्रेजां ने उन्हां नूं रंगून भिजवा दिता। इस गाने विच अग्गे दी लाइन इसे ते हैगी है, इस नाल पता चलदा है कि ओह अपने प्रेमी दे लई किस हद तक जान नूं तैयार सिखी।
1: डायमंड

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। Log on to brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो
2: गई। Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright. Transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वेबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नू छू जान वाली अते रूह नू हिला देण वाली फिल्म है चढ़दी कला।
3: देखो सच बता दो।
4: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनू सच्ची कुछ नहीं पता।
2: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधु। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नू तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
5: ARY Films and Salman Iqbal present Love This Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love This Song in cinemas this Eid ul Azha, May 27th.
6: Aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
7: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. Aap sun rahe hain Radio Briswani.
8: Hi, this is Salman Khan aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
9: Hi, this is Deepika Padukone aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
11: Hi, main hoon Tulsi Kumar aur aap mujhe sun rahe hain Radio Briswani.
12: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shah Rukh Khan.
13: Hi, this is Ajay Devgan aur aap sun rahe hain Radio Briswani.
14: Priya, next month mama ka birthday hai. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
15: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
14: अच्छा, वो क्या?
15: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
14: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
15: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: हाँ जी, देखो फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 FM ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बड़े हुए। देखो एक गाना ना कचौड़ी गली है जड़ा, एक गाना पूर्वी उत्तर प्रदेश के बिहार के कुछ हिस्सों में फैले पूर्वांचल तो हजारा पुरुषों के पलायन का भी मतलब संबंध रखता है, जो 19वीं सदी दे विच ना एगलो बर्मी युद्ध के दौरान शुरू होया सी। हजारा आम नागरिकां नूं अंग्रेजां वल्लों ना जबरदस्ती रंगून या बर्मा विच सिपाही बना के भेजा गया सी। 1824 तो 1937 तक बर्मा ब्रिटिश शासन के अधीन सी। हालांकि गाने विच उड़ल जहजवा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पर इस पर जेड़े पुरुष सीगे नू अक्सर भीड़ भाड़ वाले स्टिम्पशियों विच भेजा जांदा सी, जो कदे कलकत्ता तो रवाना हुंदे सीगे।
1: हाँ जी, मुंडा साधुआं दा

0: बहुत वधिया फिल्म
1: जो सिनेमे दे अंदर गए आप चढ़दी कला च गए हां जो बाहर आए तो चढ़दी कला च आए
0: कई फिल्मा ना बई जी दहाकिया च बनदिया ने ओ फिल्म ए आ चढ़दी कला
2: कोई
0: ऐसा मोमेंट नहीं जिथे रोना ना आवे
3: एक साल दा जिहड़ा आ ओ वक्फा नहीं आ उस सालां दे वक्फे नूं उहनां ने समेट के ना स्क्रीन टाइम दे विच फिट कर दित्ता गया
2: बहुत सोहणी मूवी होनी आ हर पंजाबी नूं देखनी चाहीदी।

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number.
4: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
5: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
4: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
5: बिल्कुल। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड ऑल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG, वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
6: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
7: तो ओम्सऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
6: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
7: अरे, ओम्सऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
6: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
7: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
6: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
7: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
3: ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
8: अरे मुंडा सदुआ दा

हाँ जी, वेलकम बैक। जी वेलकम बैक, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसोनी 101 एम ते जी अच्छे संदेश अलग दराल से बने हुए हो। और देखो कुछ चौड़ी गली बारे में तो इन्ना कुछ दसता हैगा है, तुसी देखियो जरूर एक बारी गीत ते तुसी जेडे घर दे विच बुजुर्ग होणगे ना शायद उन्हां नूं कुछ पता होवे या फिर गूगल करियो तो थानू पता लग जाना है कि यह गल्ला किनिया कुछ सच है क्या ने। हुण देखो इस दे नाल होर भी गल्ला है ने जुड़िया हुई हैं, जिवें 1885 दे युद्ध दा जिक्र। 40,000 सैनिकां दे विचों ना 15,000 मलेरिया पेचिश ते घने जंगलां विच होई लड़ाई दे कारण शहीद हो गए। हालांकि युद्ध 1885 विच खत्म हो गया सी, पर ब्रिटिश जिहड़ियां नीतियां सीगियां उन्हां दे कारण 1900 दे दहाके विच भी पलायन जारी रहा। युद्ध ने व्यापक आर्थिक अस्थिरता लिया दी सी, बर्मा विच बंदरगाह शहरां विच रोजगार के अवसर उपलब्ध सी। इन्हां लोकां ने बंदरगाह चौलां दीआं मिलां ते दिहाड़ी मजदूरां दे रूप विच काम कीता। बर्मा ब्रिटिश प्रणाली यानी कि काला पानी दे लई मशहूर सी इह, जिसके तहत भारतीय कैदियां नूं अंडमान ते सैलूलर जेल विच कैद कीता जांदा सीगा।

0: आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 35 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644 35 पर। याद रहे 04006444 35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: हाँ जी तो देखो वेला तो हो चुका है थोड़े तो इजाजत लैन का, पर हूँ गल एक होर दसनी सी विदेशिया जी की। विदेशिया जी की गल ये दसनी सी कचौड़ी गली दे नाल जुड़ी हुई कि विदेशिया जी कहते हैं कि अज भी वर्मा वर्मा तो लौट रहे मुड़े कई लोग अपने सरनेम के तौर पर वर्मा का इस्तेमाल करते हैं। ये दिलचस्प है कि गाने के नवे वर्जन ने सदियां पुराने भोजपुरी लोकगीतों के इतिहास में ना कि ताजा कर दिता है। हुण तुसीं इह गीत सुन लिया हैगा या नहीं, तुसीं फटाफट दे नाल दसो ते होर दसो कि किस गीत की तुसी पिछे की कहानी तुसी जानना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे गीत है अजिहे जिन्हां दे पिछे बहुत लंबी कहानी हैगी है। तुसी जरूर दसो ते जुड़ते रहो रेडियो प्रसवानी फेसबुक पेज है जी प्रसवानी @prasawani.com साडी ईमेल आई डी है जरिए जिहड़ा भी अपनाउणा हो अपनाओ, पर साडे नाल गल्लबात जरूर करते रहो। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू करो, मैं कल करूंगी मुलाकात। रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।
1: Mercy on it.

0: number calibrate beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

न बदला में न बदला।

पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम,

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31st में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन। ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।
1: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: गो फॉर द बेस्ट वीरे, अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: असर, मैं दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार।
1: सुकू सुकू
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम। लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनिगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brizbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: नमस्कार, दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी
7: से। टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए। ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कैसे हो आप, कैसा फील कर रहे हो, कैसा जा रहा है आपका दिन, और क्या आपने मुझे मिस किया? क्योंकि मैंने तो आपको बहुत ज्यादा मिस किया। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा झूठ कम बोला करो, अभी कल ही तो हम मिले थे, इतना टाइम मिला भी है तुम्हें हमें मिस करने का। वेल ऑफकोर्स मैं तो आपको मिस करती रहती हूँ। जब भी मुझे कुछ अच्छा दिखता है, जब भी मैं कोई अच्छा सा गाना सुनती हूँ, और जब भी कोई मुझे बहुत ही फनी चीज सुनाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे लिसनर्स को ये सब बताना है, क्योंकि मेरे दिल के इतने करीब हो ना आप, आपको आइडिया भी नहीं है। जी हाँ, सो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ। लेकिन गाने के साथ शुरुआत तो हो ही जाएगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम करते हैं। क्या आपको याद है? वेल, मैं बात कर रही हूँ हेल्दी रिचुअल की, जो कि है डीप ब्रेथ एक्सरसाइज से रिलेटेड। मतलब डीप ब्रेथ एक्सरसाइज से हम शुरुआत करते हैं, लंबी गहरी सांसों से हम शुरुआत करते हैं, और फिर हम एकदम प्रिपेयर हो जाते हैं इस दुनिया की जद्दोजहद के लिए, या फिर हम कहें इस प्रोग्राम के लिए। सो आइए सबसे पहले क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और अब जरा सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बढ़िया से गाने के साथ, जो कि है चेन्नई एक्सप्रेस का तेरा रास्ता छोड़ू ना। अब ये गाना बहुत ही खूबसूरत है, करते हैं इससे शुरुआत और फिर करते हैं और बहुत सारी बातें।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा मौसम की ओर। आपको तो पता ही है, प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले मौसम का हालचाल जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मौसम के हिसाब से हमारी प्लानिंग होती है, मूड स्विंग्स भी कहीं ना कहीं काम करते हैं। और आपको मौसम कैन बी रियली अनप्रिडिक्टेबल, तो जितना प्रिडिक्ट किया जा सकता है उतना तो किया जाए। जी हाँ, सो 24 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर, और अभी की अगर बात की जाए तो 24.9 डिग्री सेल्सियस के करीब आप फील कर पा रहे हैं। टेम्परेचर अभी है, फील आप कर पा रहे हैं 23.6 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, वहीं अगर बात की जाए रात के टेम्परेचर की, तो ठंडक बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है बीड़ू लोग, बहुत ज्यादा, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने वाला है। 10 डिग्री सेल्सियस मतलब ये अभी तक का सबसे कम टेम्परेचर है। ठंडक जो है वो बढ़ गई है, सर्दियों ने दस्तक दे दिया है, और ऐसे में 10 डिग्री सेल्सियस के साथ आपको क्या करना है? वेल, अच्छे से अपने आप को कोजी कोजी होकर रखना है। जी हाँ, करके रखना है। और इसी के साथ अगर एयर क्वालिटी की बात की जाए तो एयर क्वालिटी है एकदम फेयर। वहीं अगर बात की जाए बारिश की, तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि ये हफ्ता आपको बारिश देखने को नहीं मिलेगी, संडे से आपको बारिश देखने को मिलेगी। सो ये पूरा का पूरा वीक डेज जो है वो आप सुकून से बिता सकते हो, अच्छे से सूरज की किरणों को अपनी बॉडी में सोक इन कर सकते हो। जी हाँ, क्योंकि आपको तो पता ही ठंड है, प्लस वाइटामिन डी वैसे ही बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, तो जितनी धूप सेक सकते हो उतनी धूप सेकिए। और मैं तो कहती हूँ कि सनस्क्रीन यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप सनस्क्रीन यूज नहीं करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यू नो व्हाट, इट इज अ कॉन्वर्सेशन और डिबेटेबल टॉपिक। कुछ लोग कहते हैं कि सनस्क्रीन बहुत ज्यादा जरूरी है, पर कुछ लोग कहते हैं कि सनस्क्रीन के बिना भी तो हम लोग इतने वक्त तक जीते आ रहे हैं, तो हम तब कैसे हेल्दी थे। सो या इज अबाउट यू, इट इज अप टू यू एक्चुअली, आपको क्या करना है। यहां पर आगे की ओर बढ़ते हैं, और अगला यानी कि कल का अगर मैं आपको मौसम का हालचाल बताऊं यानी कि वेडनेसडे का, तो सनी रहेगा पूरी तरह से, और 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो रहने वाला है, मतलब अच्छा खासा आपको धूप मिलने वाली है, मजेदार धूप। जी हाँ, और इसी के साथ रात को भी टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब जितनी ठंड आपको आज लग रही है उतनी आपको कल नहीं लगने वाली है, ये तो पक्की बात है। रात की बात मैं कर रही हूँ, नो चांसेस ऑफ बारिश। और वैसा ही मौसम जो है वो थर्सडे को रहेगा, दो ऑल्दो थर्सडे को जो है वो 22 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा, मतलब आज और कल के मुकाबले ज्यादा कम, बट इसके अलावा बाकी सब मुझे बढ़िया नजर आ रहा है। और जैसे मैंने कहा कि आपको पूरा का पूरा हफ्ता भर भर के सूरज की किरणें मिलने वाली हैं, तो उनको सोक इन कीजिए, अपनी ठंड को उस गर्मी से हील कीजिए। और यहाँ पर आगे की ओर बढ़ते हैं, और अगला गाना मैं आपको सुनाती हूँ जो कि बहुत ही जबरदस्त है।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT, यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bin Coin. Save, spend or donate your Bin Coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today. कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
2: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन, बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनिगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brizbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

0: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा सबसे पहले आपको ये बता दें कि आप अपनी फरमाइशों को हम तक कैसे हमारे इस प्रोग्राम में पहुंचा सकते हो। जी हाँ, आप लोग बोलोगे कि हैं वाओ, ऑफ कोर्स अगर आप मेरे पुराने लिसनर हो तो आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, बट इन केस यू डोंट नो लेट मी टेल यू। जी हाँ, आप अपने फेवरेट गानों के साथ, अजीज गानों के साथ, उन चुनिंदा खूबसूरत गानों के साथ पार्टिसिपेट कर सकते हो हमारे इस प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो, और आपकी हिस्सेदारी तो बहुत ही जरूरी है भाई, ये तो पक्की बात है। सो आपको करना क्या है, वो करने के लिए आपको एक नंबर डायल करना है और वो नंबर है +91 82 88 8 7171। जी हाँ, इसी के साथ आई रिपीट +91 82 88 8 7171। तो बस फिर जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश, और जब तक आप भेज रहे हैं हमारी तरफ से एक और लचक डचक और एकदम मचक सा गाना आप सबके लिए।
1: नजर में तू ही तू

इसी के साथ अब आपको एक और बहुत ही दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है इंटरनेट पर। शायद आपने इसकी वीडियो देखी भी होगी, और इनकेस आपने नहीं देखी है तो मैं ही आपको बता देती हूँ। सो आप में से किस किस ने रॉबिनहुड के बारे में सुना? सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ। वेल, मुझे लगता है हम सब ने ऑलमोस्ट सुना ही है रॉबिनहुड के बारे में, राइट? मतलब वो रिच को जो है वो लूटता था और पुअर यानी कि गरीबों में बांटता था, अमीरों से लूटता था गरीबों में बांटता था, उसे हीरो कहा जाता था। इट वॉज अ गुड स्पोर्ट्समैन, ही वॉज अ गुड आर्चर, मतलब क्या क्या नहीं वो बंदा कर सकता था। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो उसके बारे में कही जाती है वो यही कि अमीरों को लूट के गरीबों की झोली भरता था, ऐसा था रॉबिनहुड। अब मैं आपको कुछ ऐसा किस्सा सुनाने वाली हूँ जब आपको लगेगा कि अच्छा रॉबिनहुड फिर से आ गया है क्या इस दुनिया में। वेल एग्जैक्टली रॉबिनहुड आया है या नहीं आया वो तो आप डिसाइड करोगे। यहाँ पर ये किस्सा कुछ ऐसा है कि जो यूपी है यानी कि उत्तर प्रदेश है भारत में, वहां के बुलंदशहर में कोट में, जी हाँ कोट के पास, एक व्यक्ति एक बैग लेकर जा रहा था। वो अपनी लैंड की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने आया हुआ था और उस बैग में उसने 2,00,000 रुपए कैश रखा हुआ था, और रफली आप कह सकते हैं $2,200 के करीब जो है वो कैश उसके पास उस बैग में था। अब वो जा रहा था अपना काम करने और एकदम से कहीं से बंदर आता है और वो बंदर उसका बैग छीन लेता है और जाकर एक ऊंचे से पेड़ पर बैठ जाता है। आप लोग बोलोगे हैं फिर क्या हुआ, आगे बताओ। नहीं वेल डोंट वरी, बता रही हूँ। सो वो बंदर ऊपर लेकर चला जाता है बैग को। अब आप लोग बोलोगे कि फिर उस बैग को कैसे लिया उन्होंने। वेल, वो बैग को लेने की कोशिश कर रहे थे पर बैग को तो वो ले नहीं पाए, लेकिन उस बंदर ने कुछ अजीबोगरीब हरकत करनी शुरू कर दी, और वो हरकत थी उस बैग को खोल के उस कैश को फेंकना। जी हाँ, आपने सही सुना। सो वो बंदर ने उस बैग को ओपन कर लिया और बड़े ही मजे से उस कैश को निकाल कर ऊपर पेड़ से वो फेंकने लगा। मतलब पैसे की बारिश जो आपने कभी सुना है वो वैसे ही हो रही थी वहां पे। अब वहां देखकर ऐसा नजारा, लोग जो है वो बहुत ज्यादा आकर्षित हो गए। मतलब ऑफकोर्स पैसे किसी के भी हो, अगर वो आसमान से गिर रहे हैं या पेड़ से गिर रहे हैं कोई छोड़ेगा तो नहीं, राइट? सो वहां पे भी कुछ ऐसा ही हुआ। जो बंदे लोग थे जितने भी फटाफट भाग कर आए और वो बंदर पैसे गिरा रहा है और बंदे वहां पर नीचे उसे लपेटे में ले रहे हैं, मतलब ऑफ कोर्स वो उन्हें उठा रहे हैं, और जिस व्यक्ति के वो पैसे थे वो बेचारा उनको उसको बंदर को डराने की कोशिश कर रहा है, धमकाने की कोशिश कर रहा है, प्यार से पुचकाने की कोशिश कर रहा है, पर वो बंदर नहीं मान रहा है। बंदर वाज लाइक यू नो व्हाट, मैं रॉबिनहुड का दूर का रिश्तेदार हूँ एंड दिस इज व्हाट आई एम गोना डू, अमीरों से लूटूंगा गरीबों में बांटूंगा, तुम क्या कर सकते हो, तुम मुझे बताओ तुम कर क्या सकते हो, तुम तुच्छ इंसान हो, तुम क्या कर सकते हो। एंड या ये एक्सप्रेशन उस बंदर के चेहरे पर था। गेस व्हाट, उस बंदर ने बहुत सारा कैश जो है वो बांट दिया, बांटने से मेरा मतलब ऊपर पेड़ से गिरा दिया, लोगों ने उसे उठा लिया। बाद में उस बैग को रिकवर किया गया लेकिन उसमें से काफी सारी रकम गायब थी, काफी सारा कैश जो है वो गायब था। लोगों ने जिन्होंने उठाया था कुछ ने वापस कर दिया लेकिन बहुत सारे लोगों ने वापस नहीं किया। सो अगेन, कुछ गरीबों की तो बात बन गई लेकिन वो अमीर था या नहीं जिसका बैग उठा था वो हमको नहीं पता है। बट द थिंग इज कि वो बंदर रॉबिनहुड का दूर का रिश्तेदार डेफिनेटली था, क्योंकि इमेजिन मतलब उसने क्या काम किया, बैग उठा के लेके गया, पेड़ पर चढ़ गया और वहां से बैग पैसे की बारिश करने लग गया। मतलब क्या कहूं मैं इस बिहेवियर को, इतना ही कह सकती हूँ कि वो डेफिनेटली हमारे दूर के पूर्वज हैं। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और ये खूबसूरत सा गाना जो है ये फरमाइशी गीत है, हमारी तरफ से नहीं है, ये फरमाइश आई है हमारी बहुत ही खास लिसनर अमला जी की तरफ से, और जो गाना उन्होंने किया है फरमाइश, उसका नाम है अखियों का नूर है तू। जी हाँ, और ये खूबसूरत सा गाना जो है वो गाया है सुमन कल्याणपुर जी ने, और वो उन्हीं को ट्रिब्यूट देना चाह रही हैं। सो ऑफ कोर्स हम उनका साथ देने वाले हैं इसमें, क्योंकि सुमन कल्याणपुर जी जो है 31 मई को उन्होंने रुखसती ले ली थी इस दुनिया से, और अब वो नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उनके गाने हमेशा रहेंगे। सो थैंक यू सो मच सबसे पहले तो अमला जी उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए, बिकॉज शी डिजर्व That. And ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही खूबसूरत खूबसूरत गाने फरमाइश करते रहिए, और ये रहा आपका ये प्यारा सा गाना हमारी तरफ से।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, aur phir mere tarike se mujhe samjhaye.
3: Arshad Lawyers hai tumhari problem ka solution. कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
0: Yaar Rahul, tere case ka kya hua?
1: Yaar, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Meri advice hai, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे नीबिया के साथ। दोस्तों, इसी के साथ स्टडी ने क्लेम किया है कि ओनिंग अ डॉग कुड हेल्प यू लिव लॉन्गर। जी हाँ, तो स्टडीज ने ये प्रूव कर दिया, ऑल दो स्टडीज ये पहले ही प्रूव कर चुकी हैं कि अगर आप डॉग ओनर हो, अगर आपके घर में फरी फ्रेंड है, खासकर डॉग्स, तो आपको डिप्रेशन होने के चांसेस कम है, हार्ट स्ट्रोक होने के चांसेस कम है, और इवेंचुअली अगर ये चीजें कम होंगी तो आप लंबा जी सकते हो, हेल्दी जी सकते हो। तो स्टडी ने क्लेम किया है कि डॉग ओनर्स जो हैं आर 31% लेस लाइकली टू डाई फ्रॉम अ हार्ट अटैक और स्ट्रोक कंपेयर्ड विद द पीपल हु डू नॉट ओन डॉग्स। सो रिसर्च ने ये भी लिंक किया है कि डॉग ओनरशिप जो है वो इम्प्रूव करती है रिकवरी में आफ्टर मेजर कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स। जी हाँ, कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स से आपको हील करने में जल्दी हेल्प करती है इफ़ यू हैव डॉग। जी हाँ, पर्टिकुलरली फॉर पीपल हु लिव अलोन, जो लोग अकेले रहते हैं, जिनको लोगों के साथ, बाकी इंसानों के साथ रहना पसंद नहीं है, उनको डेफिनेटली डॉग जो है वो रखना चाहिए, क्योंकि वो उनको सच में बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन रखता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रखता है, और कभी भी अकेला फन फील होने देता ही नहीं है। जी हाँ, और स्टडीज़ ने ये भी कहा है, स्टडी शो द पीपल हु रेगुलरली वॉक देयर डॉग्स ऑफन गेट सिग्निफिकेंटली मोर एक्सरसाइज देन दोज विदाउट डॉग्स। सो यू नो वॉट, अगर आप लोग लिटरली ये फील करते हो कि आप लोग सोचते रह जाते हो, एक्सरसाइज करेंगे, वॉकिंग पे जाएंगे, जॉगिंग करने जाएंगे, घूमने जाएंगे, लेकिन कर नहीं पाते हो, मैं कहती हूँ एक कुत्ता रख लीजिए, एक प्यारा सा डॉग रख लीजिए, और फिर देखिए कि उसको घुमाने तो जाना ही पड़ेगा। अब उसको घुमाने तो जाना पड़ेगा तो इवेंचुअली आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। सो आप अगर देखोगे तो साइंटिफिकली ये बनता है, ये लॉजिकल है कि डॉग ऑनर्स जो हैं वो क्यों अच्छी और लंबी लाइफ जी सकते हैं, और ये तो स्टडीज ने प्रूव कर दिया। प्लस आई एम अ डॉग लवर, सो ऑफ कोर्स आई काइंड ऑफ अग्री टू इट। आप मुझे बताइएगा क्या आप भी यही सोचते हैं। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से। oh, oh.
5: दीवार।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ एक बहुत बड़ी मतलब बड़े सेलिब्रिटीज की वेडिंग जो है वो हो चुकी है। और सबसे पहले हम कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं यहाँ पे डुआ लिपा और कैलम टर्नर को। जी हाँ, फाइनली कपल ने कर ली है शादी 2 दिन पहले, और यहाँ पर उनकी शादी जो है वो काफी सुर्खियों में बनी हुई है। ऑफकोर्स जब भी कोई बड़ा सेलिब्रिटी शादी करता है तो सबसे पहले लोग ये देखते हैं कि पहनना क्या था। जी हाँ, कपड़े कैसे लग रहे थे, वो पूरा का पूरा अरेंजमेंट कैसा लग रहा था, और क्या सेलिब्रिटीज वेडिंग की तरह इन्होंने भी टॉप नॉच मैजिकल इफेक्ट अपनी वेडिंग में डाला या नहीं डाला। पहले यहां पर मैं कहना चाहूंगी कि डुआ लिपा ने सबको पछाड़ते हुए कुछ ऐसा कर दिया जो कि बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं था काफी टाइम से। सो उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत स्कर्ट, हैट और बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस पहनी। नॉट अ नॉर्मल यूजुअल वेडिंग ड्रेस, बट अ वेरी वेरी प्रिटी स्कर्ट ड्रेस एंड स्कर्ट यू नो कोड सेट, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। उन्होंने लिटरली सिर्फ और सिर्फ 8 लोगों में शादी की है। आप लोग बोलोगे कि हाँ, तभी ज्यादा अच्छी है, जितने कम लोग उतनी बढ़िया शादी। निवेश शर्मा, ये तो मतलब सबसे बड़ा लॉजिक है, बस मानते नहीं है लोग, बात तो सही है। सो यहाँ पर डुआ लिपा जो है वो सेलेना गोमेज के बाद जो है वो हाई प्रोफाइल वेडिंग सेलिब्रिटीज वेडिंग्स की लिस्ट में जो है वो शामिल हो गई है। ऑल्दो इनकी शादी जो है वो उतनी बड़ी शादी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने बहुत थोड़े लोगों में की। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट तरीके से शादी की, बट इतना मैं कह सकती हूँ कि जो चीज ये कपल शेयर कर रहा था जस्ट लाइक एनी अदर कपल, वो था मुस्कुराहट। जी हाँ, वो खुशी वो नजर आ रही थी। जी हाँ, और यहां पर ये भी कहा गया कि जब डुआ लिपा कैलम के सामने आ रही थी, व्हेन शी वाज वॉकिंग डाउन द आइल, कैलम जो है वो लिटरली शिवर कर रहे थे। ही वाज शेकिंग, क्योंकि ही वाज सो सो सो सो यू नो ओवरवेलमिंग सिचुएशन फॉर हिम, कि वो लिटरली आंखों से आंसू उनकी रुक नहीं रहे थे। एंड यू नो व्हाट, आपने देखा होगा कि आजकल जो है वो जो ग्रूम्स हैं वो अपने आंसुओं को छुपाते नहीं है। जब भी वो अपनी दुल्हन को देखते हैं वो एकदम से रोना शुरू कर देते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। ऑफ कोर्स दैट इज खुशी के आंसू। आप लोग बोलोगे कि हाँ हाँ, खैर हर जगह खुशी के नहीं होते, कहीं कहीं दूसरे भी हो सकते हैं कि क्या हो रहा है, मेरी शादी क्यों हो रही है। यार, जिनकी जबरदस्ती हो रही होगी वो दूसरे वाले आंसू रोएंगे। बट द थिंग इज कि यहाँ पर बहुत सारे ग्रूम्स जो हैं वो लिटरली अपनी दुल्हन को देख के, जब वो आती है उनके सामने पहली बार उस ड्रेस में, उस वेडिंग ड्रेस में, उस लुक में, वो दुल्हन वाले लुक में, तो ग्रूम्स अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाते। एंड कैलम वॉज ऑल्सो लाइक दैट। जी हाँ, डुआ लिपा को देखकर वो लिटरली अपनी आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाए, और यहाँ पर कहा कि इतनी खूबसूरत शादी वो भी सिर्फ 8 लोगों में किसी ने नहीं देखी। सो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द लवली कपल, एंड हम यही कहेंगे कि आपका प्यार जो है वो बना रहे दुनिया के अंत तक, और साथ भी आपका बना रहे। इसी के साथ यहां पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31st में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
11: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
12: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
11: अच्छा, वो क्या?
12: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
11: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
12: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
11: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं. अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता. कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
13: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ. फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं.
11: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
13: बिल्कुल. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया. ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स. अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए. ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG. वेबसाइट omsorg.co.in. व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360. ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर.

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रसवानी 107.1 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा बर्थडे विश कर लेते हैं एक बहुत ही खास और चुलबुली अभिनेत्री को, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ सोनाक्षी सिन्हा। जी हाँ, खामोश की सुपुत्री जी की, जी हाँ ऑफकोर्स शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी, जो कि खुद ही काफी बड़ी स्टार हैं, सोनाक्षी सिन्हा की मैं बात कर रही हूँ। और मैं इतना कहूंगी कि आपकी वो चहचहाहट, वो प्यारा सा खूबसूरत सा वो जो नेचर है आपका, वो हमें बहुत ज्यादा पसंद है। हमें आपकी फिल्में बहुत पसंद है, हमें आपकी आर्टिस्ट्री जो है वो बहुत पसंद है। सो थैंक यू सो मच हमें एंटरटेन करने के लिए ओवर द एयर्स, एंड थैंक यू सो मच हमारे लिए इतनी प्यारी प्यारी चीजें करने के लिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप और आपके हस्बैंड जो भी करते हो वी एंजॉय दैट। सो सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से, रेडियो ब्रसवानी की तरफ से। हम यही कहेंगे ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे, खूबसूरत रहे, आप हेल्दी रहें, वेल्दी तो आप हो ही, और भी ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट करें और सबके साथ प्यार बांटे और खुश रहें, यही है हमारी दुआ। और क्योंकि सोनाक्षी सिन्हा का है जन्मदिन, तो ऑफकोर्स एक गाना हम उनका प्ले करने वाले हैं, और वो गाना जो है जो कि मैं प्ले करने वाली हूँ वो है बहुत ही ज़बरदस्त, और कहीं ना कहीं वो आपको डांस भी करवा देगा। सो मैं कह रही हूँ कि आइए ज़रा सुन ही लें फिर वो गाना।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया की तरफ। क्या हो रहा है दुनिया में, वॉर फ्रंट पे, पॉलिटिकल वर्ल्ड में, आइए जरा बात करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमले किए, 5 लोगों की मौत, कई घायल। जी हाँ, रूस ने सोमवार रात को यूक्रेन के कई शहरों पर बड़ा हमला किया है जिनमें 5 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के द्निप्रो में 4 लोगों की मौत हुई और 16 लोग घायल हुए, जबकि कीव में भी एक व्यक्ति की मौत हुई और 29 लोग घायल हुए। पिछले हफ्ते रूस ने चेतावनी दी थी कि वह निरंतर हमले करेगा। ये चेतावनी उस ड्रोन हमले के बाद आई थी जो पिछले महीने यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले इलाके के एक हॉस्टल पर हुआ था जिसमें 21 लोग मारे गए थे। कीव के मेयर विटाली क्लिटसित्स्को ने लोगों से शेल्टर्स में रहने की अपील की है। कीव की सिटी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख तिमुर तंकाचेंको ने कहा कि दुश्मन बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहा है।

0: करनी थी।
1: की गल करनी है?
0: तेरे मेरे बारे
1: की।
0: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
1: बचपन दी बात होर सी।
0: पर 10 साल हो गए।
1: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
0: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।
2: मुंडे आवे

0: अच्छा बाबा मान गई, बस कर अब।
1: जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ खबरों की बात हो रही है। अमेरिका में 30 भारतीय नागरिक गिरफ्तार हुए, आइए जानते हैं क्या वजह है। अमेरिका में ऑपरेशन चेकमेट के तहत लगभग 30 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। न्यूजीलैंड एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आरोप है कि ये लोग गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे थे और ट्रक ड्राइवर के रूप में काम कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि इन्हें जल्द ही देश से बाहर भेजा जाएगा। अमेरिका की कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन ने सोमवार को जानकारी दी कि 11 से 15 मई के बीच एरिजोना के यूमा सेक्टर में बॉर्डर पेट्रोल एजेंटों ने 52 लोगों को पकड़ा, इनमें से 36 लोग सेमी ट्रक चला रहे थे। गिरफ्तार किए गए 36 ट्रक ड्राइवरों में से 30 भारत से थे, बाकी 6 मेक्सिको, एल सल्वाडोर और रूस से थे। इनके पास कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और वर्जीनिया जैसे राज्यों से जारी किए गए कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस थे, कुछ के पास कोई लाइसेंस नहीं था। ज्यादातर के पास रोजगार की अनुमति वाले दस्तावेज थे जो बाइडेन प्रशासन के दौरान मिले थे, लेकिन अब मान्य नहीं है। सभी को फेडरल कानून के अनुसार प्रोसेस किया गया और उन्हें देश से बाहर भेजा जाएगा।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644 पर, याद रहे 04006444 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
7: जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। वहीं अमेरिका ईरान में कब होगा समझौता, इस बात पर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है जवाब। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ एक हफ्ते में समझौता हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह समझौता युद्ध विराम को आगे बढ़ाने और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने से जुड़ा होगा। ABC न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि हालात अच्छे दिख रहे हैं, बहुत अच्छे। ट्रंप ने यह भी बताया कि दिन में एक छोटा सा मसला सामने आया था, लेकिन उन्होंने उसे तुरंत सुलझा लिया। राष्ट्रपति के मुताबिक ये मसला ईरान की नाराजगी से जुड़ा था जो लेबनान पर हो रही इजरायली हमलों की वजह से था। उन्होंने कहा, मैंने हिजबुल्ला से बात की है और कहा कि गोली मत चलाओ। मैंने नेतन्याहू से बात की और कहा गोली मत चलाओ। दोनों ने एक दूसरे पर गोली चलाना बंद कर दिया। ट्रंप ने माना कि ये प्रक्रिया आसान नहीं है क्योंकि दोनों देशों के बीच गहरी दुश्मनी है। उन्होंने कहा, आप एक बहुत बड़े देश की बात कर रहे हैं जो समझौता करना चाहता है, उनके लिए आसान नहीं है, हमारे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन हमें जो चाहिए वो मिल रहा है।

जी दोस्तों, वहीं ईरान ने भी कुछ कहा है और ट्रंप तो कहते ही रहते हैं ईरान ने भी कुछ कहा है। आइए जरा जानते हैं ईरान ने क्या कहा है। ईरान ने ट्रंप से कहा है कि ये काम कर देंगे तो आपको जीता हुआ मान लेंगे। जी हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कुछ अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स पर पक्षपात का आरोप लगाया है, जिसके बाद ईरान ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि ईरान अपनी नेवी और एयरफोर्स को पूरी तरह खत्म मान ले, सेना अपने हथियार जमीन पर रख दे और सफेद झंडा लहराकर हार स्वीकार कर ले, तब भी अमेरिकी मीडिया ईरान को विजेता घोषित कर देगा। इसके बाद ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप पर तंज कसते हुए जवाब दिया है कि भारत में स्थित ईरानी दूतावास ने एक्स पर लिखा, अगर आप हमारे परमाणु अधिकार मानते हैं, हर मोर्चे पर जंग खत्म करते हैं, हमारे इलाके से बाहर निकलते हैं, समुद्री नाकाबंदी हटाते हैं, कठोर प्रतिबंध खत्म करते हैं और इस जंग से हुई भारी तबाही का मुआवजा देते हैं, तो हम खुशी से दुनिया को बताएंगे कि आपने एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत हासिल की है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एबीसी न्यूज से बातचीत में कहा था कि ईरान के साथ एक हफ्ते में समझौता हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह समझौता युद्ध विराम को आगे बढ़ाने और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने से जुड़ा होगा।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ट्रंप को रोस्ट करने का सेशन यहाँ पर आ गया है। सो अगर आप लोग इसका इंतजार कर रहे थे तो आइए विराजमान हो जाइए, जहां भी आप बैठे हैं बैठे रहिए, अगर खड़े हैं तो बैठ जाइए, क्योंकि आपको बहुत ही मजेदार जो है वो मजे आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रंप जो है वो लिटरली सुर्खियों में बने हुए। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा ये क्या बात हुई करने वाली, मतलब सुर्खियों से इंसान वो बाहर जाता कब है। सो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ट्रंप की जो है 25th यानी कि 250th जो एनिवर्सरी थी अमेरिका की, अमेरिका डे की, वो जो है वो हो गई है कैंसल। मतलब वो जो सेलिब्रेशन थी, जो कि बहुत ही बड़ा मेगा कॉन्सर्ट रखने वाले थे, वो अगेन यहाँ पे कैंसिल हो गया, क्योंकि अपेरेंटली बहुत सारे स्टार्स ने, बहुत सारे म्यूजिशियंस ने ड्रॉप आउट कर लिया है उस सेलिब्रेशन से। तो ट्रंप ने अब देख लिया कि ओके ये तो बात नहीं बनेगी, मतलब सब मेरे को देख के छोड़ के जा रहे हैं। वहां पे जज ने बोल दिया कि कैनेडी सेंटर से अपना नाम हटा लो, नहीं तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। जी हाँ, तो ऑफकोर्स यहाँ पर उनको ये भी बुरा लग गया। सबसे पहली बात तो कोई भी म्यूजिशियन जो है या फिर आर्टिस्ट उनके साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं करना चाहता, उनकी सेलिब्रेशन का पार्ट नहीं बनना चाहता, तो वैसे ही डल्ले में जा रहा है सब कुछ। लेकिन यहाँ पर जो कैनेडी सेंटर के साथ उन्होंने अपना नाम जोड़ लिया था, उसको जज ने बोल दिया है कि ओके तुम बाज आ जाओ, नहीं तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दी जाएगी। सो यहाँ पर ये सब तो चल ही रहा था, वहां पर ईरान भी एकदम मजेदार तरीके से तंच कसता हुआ नजर आया ट्रंप के ऊपर, जब ईरान ने एक बहुत ही फनी बिल जो है वो बिल की पिक्चर जो है वो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की, और उस बिल में $250 का वो बिल था, और $250 के उस बिल पे नजर आ रहे थे ट्रंप और एपस्टीन एक दूसरे के साथ में हंसते हुए। जी हाँ, वैसे तो कहा ही गया है कि फ्रेंड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, बट यहाँ पे सिचुएशन जो है वो सेम है। अच्छा, उसको कैप्शन करने का तरीका भी बहुत फनी था, नो वन सक्सीड्स अलोन, फ्रेंड्स आर एसेंशियल, सो ऑलवेज रिमेंबर योर्स। जी हाँ, सो यहाँ पर तंच कसना सीखे तो कोई ईरान से। नाउ आई एम नॉट सेइंग ईरान इज अ वेरी गुड कंट्री, आई मीन द पीपल आर गुड बट द रिजीम इज बैड, बट देखेंगे इसकी यहाँ पर अगर ट्रंप के पीछे वो पड़े हुए हैं तो वो गलत नहीं है, क्योंकि ट्रंप जो है वो भी बाकी दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं। सो यहाँ पर ये बहुत ही फनी चीज है, अगर आपने इसे नहीं देखा तो जरूर देखिए। $250 का ये बिल जो है उसकी तस्वीर शेयर की गई और उस पर फोटो लगाई गई है ट्रंप और एपस्टीन की। अब ये बंदा जो है वो हमेशा कहता है कि मेरा तो एपस्टीन से कोई लेना देना ही नहीं है, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, मेरा भूत वहां पर घूम रहा था, यू नो वॉट, मेरा डोपगिंग वहां पर घूम रहा था। मतलब वो कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि एपस्टीन की पार्टीज में होता क्या था। अरे आपको नहीं पता था, आप क्या अंधे या बहरे थे? बता देंगे इसके यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की वो फोटो लगाना एपस्टीन के साथ, वो भी $250 के बिल पर, ओनली ईरान कैन डू इट। जी हाँ, मतलब यहां पर ईरान जो है वो कह रहा है कि चाहे वॉर हो वेपन्स की या वॉर हो ऐसे जियोपॉलिटिक्स की या फिर यू नो सोशल मीडिया की, हम जो है वो जीतने वाले हैं इसे अच्छी तरह। माना कि हमारे पास आपके जितने हथियार नहीं है, लेकिन हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अब ट्रंप जो है वो खुद सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, क्या करूं, मैं कहां जाऊं, सबके सब लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। जी हाँ, कहां जाऊं, मैं मार्स पे जाऊं, लेकिन मार्स पे भी जाया जा सकता है या नहीं, दैट इज ऑल्सो क्वेश्चन, क्योंकि मार्स की जितनी भी तस्वीरें वो दिखाते हैं वो तो अल्जीरिया की हैं। जी हाँ, सो ऐसे में मार्स पे गया भी है इनका कुछ, वो भी क्वेश्चनेबल है। सो डोनाल्ड ट्रंप एपस्टीन के साथ नजर आए $250 के बिल पर, आप मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी वो तस्वीर। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality, service and reasonable prices.
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर. रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स. घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी. आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे. रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स. तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा. रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर. आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896. हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au.

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ एक और चीज, एक और किस्सा जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है ऑनलाइन,
1: 952-660।
2: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ एक और चीज, एक और किस्सा जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है ऑनलाइन, वो है एक एलिमेंट्री स्कूल।

माउंटेन लाइन देखा जाएगा तो स्कूल जो है वो लिटरली शट डाउन हो जाएगा, और वैसे ही सिचुएशन हुई। मतलब जितनी भी अथॉरिटीज थी उन्होंने कॉल कर दिया वाइल्ड लाइफ यू नो रेस्क्यूअर्स को, और सबको उन्होंने कॉल कर दिया, और अपने बच्चों को आई मीन स्टूडेंट्स को टीचर्स को एक जगह पर बंद करके रख दिया। सब कुछ एकदम पैनिक मोड में आ गए, एकदम लॉकडाउन में पूरा का पूरा स्कूल चला गया। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही ज्यादा फनी होने वाला है, और उसके बाद आपको लगेगा कि व्हाट। जी हाँ, लेकिन जब जो ऑफकोर्स उनको बुलाया गया था जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को या एनिमल रेस्क्यू सेंटर वालों को जो बुलाया गया था, जब वो वहां पर देखने लगते हैं सबको जो है वो एकदम एक कमरे में बंद करके, जब वो उस माउंटेन लाइन को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो देखते हैं कि एक ऑरेंज फैट ऑरेंज चबी ऑरेंज कैट जो है वो वहां पर बैठी हुई है और वो एक चूहे को खा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना। सो वो जो माउंटेन लाइन जो है वो अपेरेंटली एक फैट चबी जो है वो बिल्ली है जो कि चूहा खा रही है अपेरेंटली, और किसी ने उसे देख लिया था और उन्हें लगा कि ओ माय गॉड माउंटेन लाइन जो है वो स्कूल में आ गया है और ये तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो गई है, यहाँ पर फटाफट बच्चों को बचाना पड़ेगा, फटाफट टीचर्स को नोटिफाई करना पड़ेगा। गेस व्हाट, उन्होंने तो पेरेंट्स को भी बता दिया था कि यू नो व्हाट हमारे यहाँ पर एक माउंटेन लाइन घुसा है, और उसके बाद जो है सब एकदम पैनिक मोड में चले गए थे। लेकिन जब ढूंढा गया तो एक मोटी सी बिल्ली एक चूहा खा रही थी लिटरली। आप लोग बोलेंगे कि ये तो वही बात हो गई, निमेश शर्मा खोदा पहाड़ निकली चूहिया। जी हाँ, ऑफकोर्स। सो वही वाली चीज हुई कि व्हाट स्टार्टेड एज अ स्कैरी मॉर्निंग टर्न्ड इनटू वन ऑफ द मोस्ट अनएक्सपेक्टेडली हिलेरियस वायरल मोमेंट्स ऑफ द ईयर। जी हाँ, और ये रिमाइंडर है दैट समटाइम्स द स्केरियस्ट थिंग इज जस्ट समवन्स फैट ऑरेंज कैट डूइंग व्हाट कैट्स डू। जी हाँ, सो ऐसे में लोग जो है वो इतना हंस रहे हैं इस वायरल मोमेंट पे, और ऑफकोर्स भारतीयों ने तो पहले ही इंडियंस ने तो पहले ही कहावत बनाई हुई है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, और यहाँ पे तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया का भी जो है वो करने की जरूरत नहीं है, सोचा शेर और निकली बिल्ली। जी वैसी वाली सिचुएशन है। सो मैं कहती हूँ ना कि हम लोगों को ऐसे पैनिक नहीं करना चाहिए, थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, बट ऑफकोर्स प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। सो ऑफकोर्स यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि अगेन बहुत ही जबरदस्त है।

0: इस दिल
1: मुझे कुछ कहना है,
0: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है।

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

जी दोस्तों, और इसी के साथ अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट की तरफ जाने का, विच इज ओल्ड इज गोल्ड। जी हाँ, पुराने गाने, पुराने किस्से, वो खूबसूरत बातें जो कि शेयर की गई हैं उन्होंने अपनी ही जुबानी। जी हाँ, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से अपने पुराने गानों से रिलेटेड फरमाइशों को लेकर आ जाइए, बिकॉज दिस इज द परफेक्ट टाइम। और जिस गाने से मैं शुरुआत करने वाली हूँ इस खूबसूरत से सेगमेंट की, वो भी बहुत ही प्यारा है। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन से गाने से सेगमेंट की शुरुआत होने वाली है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उसका नाम है ये शाम सतानी, क्योंकि शाम हो गई है बीड़ू लोग, और ये खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, कभी कभी कुछ चीजें करना इतना मुश्किल हो जाता है कि उस चीज को करने के लिए टाइम पे पहुंचना ही मुश्किल हो जाता है। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा क्या कहावती बातें कर रही है, सीधा सीधा बोलो। सो सिचुएशन बहुत फनी है क्योंकि ये किस्सा खुद आशा पारेख जी ने शेयर किया है। आशा पारेख जी बताती है कि एक पिक्चर की शूटिंग के दौरान एक गाने की शूटिंग चल रही थी, जहां पर वो और राजेश खन्ना अपने गाने की शूटिंग कर रहे थे उस पिक्चर के लिए, और वो गाने का आखिरी अंतरा शूट होने वाला था। उस आखिरी अंतरे के लिए आशा पारेख और राजेश खन्ना को एक दूसरे के साथ एक्ट करना था और सूरज ढलते हुए का सीन डायरेक्टर को वहां पर चाहिए था। आशा पारेख जी बताती हैं कि वो सीन शूट करने के लिए हमने पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि उस वक्त हेयर ड्रेसर्स इतने खतरनाक और कॉम्प्लिकेटेड हेयर स्टाइल्स बनाने की कोशिश करते थे और बनाते थे कि उन्हें बनाने में ही 1.5 घंटा लग जाता था। जी हाँ, सो यहाँ पर वो कहती हैं कि मैं भी अपना हेयर स्टाइल बनवाने गई। अब हेयर स्टाइलिस्ट ने मेरा भी जो हेयर स्टाइल बनाया वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, उसमें देर लग गई। अब वो देर लग गई तो मैं देर से सेट पे पहुंची। जब मैं देर से सेट पे पहुंची तो मैं ऑलरेडी नर्वस थी कि डायरेक्टर मुझे देखकर बोलने वाले हैं कि इतना टाइम कैसे लगा दिया। और सच में हुआ भी ऐसा ही कुछ। डायरेक्टर साहब सामने से कहते हैं कि बस जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी करो, जल्दी करो। फिर क्या था, वो जो सीन वो लेने की कोशिश कर रहे थे उसके लिए उन्होंने गाना चलाया, क्योंकि वो गाने की शूटिंग थी। जी हाँ, आखिरी अंतरा था। वो गाना चलता है तो वो इतने ज्यादा नर्वस थे और इतनी ज्यादा हड़बड़ाहट वहां पर हो गई थी कि राजेश खन्ना की लाइंस पे लिप सिंक कर रही थी आशा पारेख, और आशा पारेख की लाइंस पर लिप सिंक कर रहे थे राजेश खन्ना। जी हाँ, आशा पारेख जी कहती है कि वो सिचुएशन इतनी ज्यादा फनी हो गई थी कि वो हेयर स्टाइल के चक्कर में, लेट होने के चक्कर में, वो ढलते हुए सूरज का शॉट लेने के चक्कर में सब कुछ इतना गड़बड़ गया कि हम एक दूसरे की लाइन लिपसिंक कर रहे थे। और जब हमने एक दूसरे रियलाइज किया कि हम एक दूसरे की लाइन लिपसिंक कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे को देखकर इतना ज्यादा हंसने लगे, इतना ज्यादा हंस हंस के हम लिटरली गिर गए। जी हाँ, लेकिन जब बात आई कि क्या वो सीन कंप्लीट हो पाया, तो आशा पारेख जी कहती है वो फिर भी नहीं हुआ। इतना सब कुछ करने के बाद इतना मेसअप हो गया था वहां पर कि सूरज ढलने का सीन उस दिन भी शूट नहीं हो पाया, और फिर वो अगले दिन के लिए चला गया। मतलब वो चीज जिसके लिए हमने पूरी तैयारी की थी वो हम कर ही नहीं पाए क्योंकि इतनी हड़बड़ाहट हो गई। बट द थिंग इज कि इसकी मेन जड़ तो हेयर स्टाइलिस्ट ही थे। मतलब सच में जब आप पुराने जमाने की पिक्चर्स देखोगे और उन हीरोइनों के एक्ट्रेसेस के वो खतरनाक हेयर स्टाइल्स देखोगे, तो आपको लगेगा कि लिटरली इसके अंदर वो बहुत सारा खजाना छुपा के ले जा सकती है। आजकल तो एयरपोर्ट पे अगर कोई वैसा हेयर स्टाइल बना के जाएगा तो आराम से कुछ बहुत सारी चीजें लेकर जा सकता है छुप छुपा के। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, जब जब बात होती है स्टाइल की, जब जब बात होती है स्वैग की, तो आपको पता है सबसे पहला नाम किसका लिया जाता है? मतलब ऐसा कहा जाता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहला स्वैगी इंसान अगर कोई आया था तो वो थे देवानंद साहब। मतलब आपको तो पता ही है, हमें भी पता है कि वो जब जाते थे काला पहन के, यानी कि ब्लैक कलर पहन के, तो लड़कियां ऊपर से छलांग मार दिया करती थी, मतलब छत से छलांग मार दिया करती थी। आप लोग बोलोगे कि अच्छा, ऐसी भी क्या फैंडम है? वेल, इट इज वॉट इट इज, यही फैंडम है और यही खतरनाक चीज है। सो ऐसा कहा जाता है कि लिटरली उनको बैन कर दिया गया था ब्लैक पहनने से। ऐसा कहा जाता है कि देवानंद साहब ने जब एंट्री की थी फिल्म इंडस्ट्री में, और वो करने वाले थे, जब अभी उन्होंने करनी थी, तो उसके लिए जब वो पहुंचते थे सेट्स पर और अपने आप को तैयार कर रहे थे, और जब उन्हें डायरेक्टर्स देखते थे, तो उन्होंने उनमें से एक डायरेक्टर्स ने बिल्कुल स्टार्टिंग की स्टेज में उन्हें कहा था कि आपके दांतों में जो दरार है वो अच्छी नहीं है, अगर आप इसे ठीक करवा लोगे तो आपके चेहरे के साथ, आपके दांतों के साथ, उस खूबसूरती के साथ वो बहुत ही अच्छे से जाने वाला और आपके लिए बहुत ही अच्छे से काम ये करने वाली है। देवानंद साहब कहते हैं कि वो जब मुझे कहा गया तो थोड़ी देर के लिए तो मुझे झटका लग गया, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे दांत जैसे हैं मुझे वैसे ही खूबसूरत लगते हैं, और मैं अपने दांतों की इस दरार को बिल्कुल भी ठीक नहीं कराने वाला हूं, मैं इसे ऐसे ही रखूंगा। गेस व्हाट, स्वैगी वो इतने निकले कि उनके दांतों की दरार जो है वो फैशन बन गई। लोगों ने अपने दांतों में दरार डलवानी शुरू कर दी, लिटरली दैट इज द फनीएस्ट थिंग। आई नो आप लोगों को लगेगा कि अच्छा ऐसा भी हुआ था, लिटरली लोगों के, जिन लोगों के दांतों में दरार थी वो अपने दांतों को बहुत ही अच्छे से जो है शो ऑफ करते हुए नजर आए, उनको लगा कि वाह क्या बात है। मतलब एक ऐसा हीरो जिसने परफेक्शन को तो ग्लैमराइज किया ही, लेकिन अपनी इम्परफेक्शन को भी ग्लैमराइज किया, लेकिन ये बात उन्होंने मानी नहीं कि उनके दांतों की दरार उन्हें ठीक करने की जरूरत है। और ये थे देवानंद साहब आप सबके लिए। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जिंदगी की महफिल, महफिल में हम अकेले, दामन को कोई चूमे, जुल्फों

अपना सुलगना किसको दिखाऊं, सांस के तूफान कैसे छुपाऊं, अपना सुलगना किसको दिखाऊं, सांस के तूफान कैसे छुपाऊं, आंखें क्या क्या देख रही है, दिल पे जो गुजरे कैसे बताऊं, आ जा रे आ जरा आ।

0: नजर आ जरा।
1: जी हाँ दोस्तों, मुझे नहीं पता कि इस गाने से खूबसूरत चीज कुछ हो सकती है। मतलब क्या कहूँ मैं रफी साहब को, आपने बीच में वो चीज फील की जो मैंने फील की, मतलब वो जो एकदम से उन्होंने अपनी टोन चेंज की, पिच चेंज की, ओ माय गॉड। उन्होंने एक ही लाइन को, मतलब एक ही अंतरे को जो दो तीन बार रिपीट होना था, उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से गाया, और क्या फ्लेक्सिबिलिटी थी। रफी साहब, आई एम अ फैन फॉर लाइफ, और मुझे तो लगता है कि मरने के बाद भी मुझे याद रहोगे आप। लिटरली क्या मतलब गाया है, और ये गाना कितना खूबसूरत है। मतलब आई डोंट नो कि इस गाने के बारे में ज्यादा बात क्यों नहीं होती है, बिकॉज दिस सॉन्ग इज जस्ट परफेक्शन। मतलब रोमांस, पैशन, सडक्शन, क्या नहीं है इस गाने में। सो या, थैंक यू सो मच रफी साहब हमें ये प्यारे प्यारे गाने देने के लिए, लाइक आई कांट थैंक यू इनफ। इसी के साथ आप सबके लिए बस इतना ही, अब आपसे विदा लेंगे, कल वापस आएंगे। हेल्दी रहिए आप, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। और ये लास्ट सॉन्ग लता जी की आवाज में, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स, बिकॉज ये है ए दिले नादान। ये गाना जितना खूबसूरत है, ये बोल जितने खूबसूरत है, गायकी जितनी खूबसूरत है, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है इसकी कॉम्पोजिशन। मतलब ये संगीत आपको बताता है कि कैसे कॉम्पोजिशन कैन बी लिटरली द लेजेंडरियस। जी हाँ, इसी के साथ बाय, सी यू, टाटा।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, CK बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

ना बदला में, ना बदला

पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम, पहले थी जादू की जापी अब है वीडियो कॉल पे पप्पी। यही सोचकर पिछला और अगला

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31st में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर जा रही हो।
3: Get ready Brisbane, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और डिमांड रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट, फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट। आज

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन विंटर फेस्टिवल की शुरुआत, जून के शुरुआत के साथ ही ब्रिस्बेन नदी के किनारे साउथ बैंक विंटर फेस्टिवल शुरू हो गया है। शानदार लाइट्स, फूड स्टॉल्स और लाइव म्यूजिक के लिए आज शाम से ही भीड़ जुटने की उम्मीद है। वहीं क्वींसलैंड ट्रांसपोर्ट का बड़ा फैसला, ब्रिस्बेन में ट्रैफिक को कम करने के लिए आज से चुनिंदा रूट्स पर नई एक्सप्रेस बसों का ट्रायल शुरू किया गया है। वहीं ओलंपिक 2032 इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट, ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक को लेकर आज एक बड़ी घोषणा हुई है। शहर के मुख्य स्टेडियम के अपग्रेडेशन का पहला फेज आज से आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया गया है। वहीं लोकल रिन्यूएबल प्रोजेक्ट ब्रिस्बेन काउंसिल ने आज शहर की सभी सरकारी इमारतों को 100% सोलर एनर्जी पर शिफ्ट करने का प्रोजेक्ट मंजूर कर लिया है। वहीं ब्रिस्बेन रियल एस्टेट में उछाल, ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिस्बेन के आउटर सबर्ब्स में घरों की डिमांड पिछले महीने के मुकाबले 10% बढ़ गई है, जिससे ये सीज रीजन इन्वेस्टर्स के लिए हॉटस्पॉट बन गया है। इसी के साथ कंगारू पॉइंट ग्रीन ब्रिज, कंगारू पॉइंट पर बन रहे नए पैदल और साइकिल ब्रिज का काम आखिरी चरण में पहुंच गया है। काउंसिल ने साफ किया है कि अगले कुछ हफ्तों में इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इसी के साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले मॉनसून की जबरदस्त एंट्री, केरल में मॉनसून ने समय पर दस्तक दे दी है और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में ये तेजी से आगे बढ़ेगा। वहीं सेंसेक्स का नया रिकॉर्ड, भारतीय शेयर बाजार ने आज सुबह एक नया इतिहास रच दिया है। सेंसेक्स और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। इसी के साथ वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल सफल, भारतीय रेलवे ने नए वंदे भारत स्लीपर वर्जन का फाइनल ट्रायल आज पूरा कर लिया है। इसी के साथ डिजिटल इंडिया की नई उड़ान, देश में ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार ने एक नया AI बेस्ड सिक्योरिटी पोर्टल लाइव कर दिया है। इसी के साथ टूरिज्म का नया हब बना लद्दाख, इस साल गर्मियों में लद्दाख और कश्मीर जाने वाले टूरिस्ट की संख्या ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं क्लीन एनर्जी में भारत नंबर वन की रेस में, राजस्थान में एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क का नया फेज आज से चालू हो गया है। इससे ग्रिड को 2000 मेगावाट एक्स्ट्रा बिजली मिलेगी, जो भारत को ग्रीन एनर्जी में आगे ले जाएगी। वहीं इसी के साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले ग्लोबल टेक समिट की शुरुआत, सैन फ्रांसिस्को में आज से दुनिया का सबसे बड़ा टेक समिट शुरू हो रहा है, जहां दुनिया भर की कंपनियां अपने नए जनरेटिव AI गैजेट्स और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी को पेश करने वाली हैं। इसी के साथ यूरोप में गर्मी का अलर्ट, यूरोप के कई देशों में जून की शुरुआत के साथ ही इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। सरकार ने लोगों को दोपहर में बाहर ना निकलने और हाइड्रेटेड रहने की सलाह भी दी है। वहीं स्पेसएक्स का नया कीर्तिमान, एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने आज सुबह एक साथ 60 नए कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक ऑर्बिट में सेट कर दिया है। इससे दुनिया के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट और तेज हो जाएगा। वहीं एविएशन सेक्टर में बड़ा बदलाव, दुनिया की प्रमुख एयरलाइंस ने आज से अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट्स में बायोफ्यूल का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। कार्बन एमिशन को कम करने के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा ग्लोबल कदम माना जा रहा है। वहीं जापान में रोबोटिक्स केयर गिवर्स, जापान ने अपने देश में बुजुर्गों की देखभाल के लिए नए एडवांस्ड AI रोबोट्स को अस्पतालों और घरों में तैनात करने की अनुमति दे दी है। वहीं ग्लोबल टूरिज्म रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल ग्लोबल टूरिज्म अपने प्री पेंडेमिक लेवल से भी 15% ऊपर निकल चुका है। लोग अब ट्रैवलिंग पर सबसे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले फ्रेंच ओपन में बड़ा उलटफेर, पेरिस में चल रहे फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज एक टॉप सीडेड खिलाड़ी तीसरे दौर में ही बाहर हो गया है। वहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नया रिकॉर्ड। फुटबॉल के दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने लीग मैच में एक और शानदार गोल दागकर अपने करियर के टोटल गोल्स की संख्या को एक ऐसे आंकड़े पर पहुंचा दिया है जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लगता है। वहीं ओलंपिक 2028 की तैयारियां तेज। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स कमेटी ने आज नए स्टेडियम्स और एथलीट विलेज का ब्लूप्रिंट जारी कर दिया। कमेटी का दावा है कि अब तक का सबसे सस्टेनेबल और हाईटेक ओलंपिक होगा। वहीं वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, भारतीय ग्रैंड मास्टर ने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के राउंड 5 में शानदार जीत दर्ज कर टेबल में टॉप पर अपनी जगह मजबूत कर ली है। वहीं फॉर्मूला 1 रेसिंग, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में आज हुई रोमांचक रेस में फरारी के ड्राइवर ने आखिरी लैप में बाजी मारते हुए पोडियम पर पहला स्थान हासिल कर लिया। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1।
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: मेरा।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

वहमों गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है। वहमों

कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर।
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Brisbane. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन।
4: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन।
5: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन।
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ सुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
9: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
11: प्रिया, next month मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे.
12: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
11: अच्छा, वो क्या?
12: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
11: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
12: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ओर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ओर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ओर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ओर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पा जाए।

0: नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

वाह, कितनी खूबसूरत लग रही है।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: आया क्या?
2: आएगा।

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक और फाइनल्स संडे 14 जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Fire ants tuhade ilake vich maujood han. Je tuhanu lagda hai ki tuhade ghar ja jayadad vich fire ants han, ta is di soochna dio. Assi tuhanu fire ants de ilaaj layi muft kit bhejange. Hor jankari layi Fire Ants Queensland ja Fire Ants QLD khojo ja 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम। लाइव Under the Stars, Tarun Raniga, Ricky from Sydney और Diman Roy लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे June 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brizvani.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just
4: a number. For change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धन राशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स और चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें। आए, आए, आए, आए, आए, आए, आए, आए,

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। तुसी बने हुए जी थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101 एम ते जी आरचे संदेश अलग दे नाल तुसी बन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत ही ज्यादा सोहना च वेला शुरू हो चुका है जी। ते इस वेले दे दौरान असीं गल्लां तां करनियां ही करनियां ने, नालों नाल इन्हां गल्लां नूं असीं पंजाबी गीतां दा तड़का भी जरूर लगाउणा है। तुसी की कहना है, तुसी जुड़ना है साडे नाल तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बसवानी 101 एम साडा फेसबुक पेज है जी ते bisoni@bisoni.com साडी ईमेल आईडी है। जरिए जिहड़ा तुहानूं चंगा लगता है तुसी ओ अपनाओ, पर साडा गलबात जरूर करो। फटाफट दे नाल अपना फोन चक लो, जुड़ना शुरू कर दो, अपनियां फरमाइशां भेजो या करो दिल दियां गल्लां। जिवें भी जुड़ना है ओ जुड़ो ते नवे पुराने गीत मैं तुहानूं सुणाउंदी रहूंगी। अज्ज इक बेहद खास जी गल करनी है तुहाडे नाल, करूंगी बातें लैके सुणो।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नूं छू जाण वाली अते रूह नूं हिला देण वाली फिल्म है चढ़दी कला।
3: देखो सच बता दो।
4: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनूं सच्ची कुछ नहीं पता।
2: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधू। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज़ होवेगी 29 मई नूं तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
5: ARY Films and Salman Iqbal present Love Thee Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love Thee Song in cinemas this Eid-ul-Azha, May 27th.

हाँ जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 ते जी आपके संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो कोक स्टूडियो भारत ने ना अपना नवा गीत कचौड़ी गली जा तो रिलीज किया ना, हर कोई इस गाने की गल कर रहा है। भोजपुरी लोक गीत का सब तो सुंदर मनिया जाने वाला यह गाना रेखा भारद्वाज ने गाया है। गाने का नवा वर्जन कचौड़ी गली हर किसी की जुबान से छाया होया है जो लोग संगीत ते आधारित है। इस बार शो ने भोजपुरी दी लह विच बनारस दी गलियां दी धुन प्रस्तुत की है। एक सदी तो भी वध पुरानी कचौड़ी गली गाने नू रेखा भारद्वाज ते बिहार दे इंडी लोक गायक उपल उदित ने गाया ते निशांत नागर ने इसनू तैयार किया है। यह गाना ना एक अजिहे समय ते कहानी नू पुनर्जीवित करता है जो कदे होया करता सी। एक अजिहे गाने नू जो एक सदी तो वध समय दी परंपरा दसदा है। ते अज इस गाने दी पूरी कहानी मैं दसदी हैगी आ तुहानू कि किवें किस दौर दे विच लिखिया गया सी, की कुछ होया सी, इस शुरुआत किवें सी। इस दी शुरुआत इस लाइन नाल हुंदी है कि सेजिया पे लोटे काला राग। बड़ा सोहना जिहा गीत हैगा, तुसीं जरूर सुनियो, पर मैं तुहानू इस दी कहानी मैं सुना दिंदी हां। गीत तुसीं यूट्यूब ते जरूर सुनियो।

कंटीनर्स फॉर्चेंज रही अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ तुहाडे नेड़े एक कंटीनर्स फॉर्चेंज रही अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है बैंक विच पाओ ना

0: गो फॉर द बेस्ट विरे अतुल भारद्वाज जी नो अजी कॉन्टैक्ट करो ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्री केसेस नो हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन क्रिमिनल लॉ डोमेस्टिक वायलेंस ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस फैमिली लॉ इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ एंड द बेस्ट पॉइंट दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट
1: थैंक्स अ टन वीरे I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

हाँ जी वेलकम बैक जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.01 एमते जी आरचे संदेश अलग दराल से बने हुए हो। देखो कचौड़ी गली गीत ते बनारस का कनैक्शन यदा हर कोई जानना चाहता है ना कि कचौड़ी गली दियाँ यादा तो खैर सब दियाँ इस गीत बाद ताज़ा हो ही गई तो मैं दस दिनी हाँ। देखो वाराणसी की कचौड़ी गली जो अज भी मौजूद है एक काशी विश्वनाथ मंदिर के कोल लाहौर टोला नाम के इलाके में स्थित एक संकरी गली हैगी है। इस गली का नाम वड्डी कहाड़ी के कड़ाही विच तली जाने वाली मशहूर पूरी कचौड़ी के कारण पिया है। तो यह कदे स्वतंत्रता सैनानिया शिक्षावादियों कलाकार बैठन का ना ठिकाणा होया करती सी जो इत्थे चाह ते कचौड़ी दे नाल राजनीतिक संस्कृति ते चर्चा करन दे लई इकट्ठा होया करदे सी। इस तो इलावा आम तौर ते व्यंग नाल भरे भोजपुरी संगीत तो हट के एक गाना भोजपुरी लोक गीत ही हैगा है।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Ataniyar. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: ਦੀ ਸੌ ਗੱਲ ਬਣ ਜੀ ਤੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ।
1: हाँ जी वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसोनी वंसन ओवन एम ते जी आर चे संदेश अलग दराल से बने हुए। अगली जी गल हैगी है वह है तवायफ गौहर जान की। गौहर जान प्यार विच दर्द चो गुजरी सी, ये कहा जाता है, तो कहा जाता है कि कहानी कितने ना कितने उसकी है। मनिया जाता है कि यह कजरी यानी कि मानसून विच गाया जाने वाला एक लोक गीत 19वीं शताब्दी विच बनाया गया सी। यह गीत एक औरत दे विरह दे दर्द नू बयां करता है। इस औरत नू तवायफ कहंदे हैगे लोग, सानू नहीं पता कहंदे हैगे ने, रिपोर्ट्स कहंदियां ने। कई रिपोर्ट्स मुताबिक ना यह कहानी लगभग 200 साल पहला किसी गौहर जान दी सी, जो बनारस दी दाल मंडी विच रहंदी सी ते एक तवायफ सी। अजिहा मन्निया जांदा है कि वह कचौड़ी गली विच अपनी पालकी विच घूमण जांदी सी ते चौक दे कोलों गुजरदे समय ना जदों लंघदे समय ना उन्होंने असलम नाम दा एक आदमी उन्होंने मिलिया सीगा। उत्थों ही तां कहानी शुरू हुई सी। दसदी हां उस बारे होर ज्यादा डिटेल्स दे विच, पर पहला सुनो एक ही।

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

0: हाँ जी जी अनु जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 FM ते। जी आप जी संदेश अलग दे नाल तुसी बने हुए हो। देखो बनारस की तवायफ गौहर जान का प्यार हुण इसकी गल करनी तो बनती बनती है। देखो जे गल करिए ना, उन्होंने कोई गलबात नहीं हुई पर उन्होंने लट्टू सी कौन ओ जिन्हां दी गौहर जान दी गल चल रही हैगी है ते जिस इंसान नूं मिले सी, मैं पहला दस्या सी ना नाम नाम सी असलम ते लट्टू सी ते उन्हां दी गहरे प्यार करन लगी सी। एक दिन ना बहुत डूंघा प्यार, एक दिन ओ गायब हो गए। पुछताछ करन ते उन्हां नूं पता चलिया कि ओ मिर्जापुर काम करन गए हैगे ने, इसलिए गाने विच उन्हां दा जिक्र हैगा। दिल्ली स्थित भोजपुरी संगीत अते साहित्य दे विशेषज्ञ जिहड़े माहिर हैगे ने निराला विदेसिया, ओह कहिंदे ने कि बहुत बाद विच उन्हां नूं पता लग्गिया कि अंग्रेजां ने उन्हां नूं रंगून भिजवा दिता। इस गाने विच अगे दी लाइन इसे ते हैगी है, इस नाल पता चलदा है कि ओह अपने प्रेमी दे लई किस हद तक जान नूं तैयार सिखी।
1: डायमंड

0: renting and thinking about owning one, or maybe an investor looking to invest. Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Mogill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Mogill and surrounding areas in Brisbane,
1: भाई,
0: Queensland.
1: पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
2: तो ओमसॉक से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई. ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.
3: Hi, this is Amitabh Bachchan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
5: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
6: Hi, this is Salman Khan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
8: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी.
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
10: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani.
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
12: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

हां जी, तक पर फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101 एम ते चार चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हैं। गाने विच गिरमिटिया गीत भी कहते हैं गाने नू ना इसनू। इस गाने नाल जुड़ी एक होर कहानी यह हैगी है कि एक गिरमिटिया गीत है जिसनू विदेश भेजे गए बंधुआ मजदूरां दे पलायन ते आधारित मनिया जाता है। इस तो इस विच ना कई लोगों का पलायन कट मजदूरी ते काम लब्बन दे लई होया सीगा। इस गीत नू उस दौर नाल भी जोड़िया गया हैगा। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान अपने संगीत प्रोग्रामा विच कजी बजाउंदे है सीगे ते अक्सर कहंदे सी कि उन्होंने इस नू बनारस विच अपने बचपन विच सुनिया सी। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने भी एक कजरी गाए हैगे ने ते अपनी किताब चंदन किवाड़ विच गौहर खान दी कहानी दा गौहर जान दी कहानी दा जिक्र भी किया है।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलां तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
2: आ रही है पंजाब दी एक सच्ची कहानी ते आधारित फिल्म चढ़दी कला। दिल नूं छू जाण वाली अते रूह नूं हिला देण वाली फिल्म है चढ़दी कला।
3: देखो सच बता दो।
4: मैं झूठ नहीं बोल रही, मैनूं सच्ची कुछ नहीं पता।
2: स्टारिंग एमी विर्क, रूपी गिल अते हिम्मत संधु। पंजाबी फिल्म चढ़दी कला रिलीज होवेगी 29 मई नूं तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां विच।
5: ARY Films and Salman Iqbal present Love These Song, starring Farhan Saeed and Mamia Shah Jafar, directed by Imran Malik. Love These Song in cinemas this Eid ul Azha, May 27th.
6: Next month mama ka birthday hai. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
7: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
6: अच्छा, वो क्या?
7: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
6: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
7: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
6: सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
8: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
6: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
8: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बिस्वानी 101.1 ते जी आर जे संदेश अलग दिनाल से बड़े हो। देखो एक गाना ना कचौड़ी गली हैगा जिहड़ा, एक गाना पूर्वी उत्तर प्रदेश ते बिहार के कुछ हिस्सों विच फैले पूर्वांचल ते तो हजारा पुरशां दे पलायन दा वी मतलब संबंध रखता हैगा, जो 19वीं सदी दे विच ना एग्लो बर्मी युद्ध के दौरान शुरू होया सी। हजारा आम नागरिकां नूं अंग्रेजां वल्लों ना जबरदस्ती रंगून या बर्मा विच सिपाही बना के भेजा गया सी। 1824 तो 1937 तक बर्मा ब्रिटिश शासन के अधीन सी। हालांकि गाने विच उड़ल जहजवा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, पर इस पर जेड़े पुरश सीगे नूं अक्सर भीड़ भाड़ वाले स्टिमशियों विच भेजा जांदा सी जो कदे कलकत्ता तो रवाना हुंदे सीगे।
1: हाँ जी, मुंडा साधुआं दा

0: गेट रेडी ब्रिस्बेन आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम। लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brizbani.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
1: आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just an
4: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
5: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
4: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
5: अरे, ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
4: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
5: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
4: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
5: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
3: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
6: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 0411270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 0411270035। रिमेम्बर द नंबर इज 0411270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसोनी 107.1 ते जी आरचे संदेश अलग दिराल से बने हुए हूँ। देखो कुछ चौड़ी गली बारे में तो इन्ना कुछ दसता है तो उसी देखियो जरूर एक बार गीत ते तुसी जेडे घर दे विच बुजुर्ग होणगे ना शायद उन्होंने कुछ पता हो या फिर गूगल करो तो थोनू पता लग जाना है कि यह गल्ला किनिया कुछ सच है क्या ने। हुण देखो इस दे नाल होर भी गल्ला हैगियां ने जुड़ियां होईयां जिवें 1885 दे युद्ध दा जिक्र। 40,000 सैनिकां दे विचों ना 15,000 मलेरिया पेचिश ते घने जंगलां विच होई लड़ाई दे कारण शहीद हो गए सी। हालांकि युद्ध 1885 विच खत्म हो गया सी पर ब्रिटिश जिहड़ियां नीतियां सीगियां उन्हां दे कारण 1900 दे दहाके विच वी पलायन जारी रहा। युद्ध ने व्यापक आर्थिक अस्थिरता लिया दिती सी ते बर्मा विच बंदरगाह शहरां विच रोजगार दे अवसर उपलब्ध सी। इन्हां लोकां ने बंदरगाहां चौलां दीआं मिलां ते दिहाड़ी मजदूरां दे रूप विच काम कीता। बर्मा ब्रिटिश प्रणाली यानी कि काला पानी दे लई मशहूर सी इह, जिस दे तहत भारतीय कैदियां नूं अंडमान ते सैलूलर जेल विच कैद कीता जांदा सीगा।

0: साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और
2: सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है

0: हाँ जी, तो देखो वेला तो हो चुका है थोड़े तो इजाजत लैण का, पर हूँ गल एक होर दसनी सी विदेशिया जी की। विदेशिया जी की गल ये दसनी सी कचौड़ी गली के नाल जुड़ी हुई कि विदेशिया जी कहते हैं कि अज भी वर्मा वर्मा तो लौट रहे मुड़े कई लोग अपने सरनेम के तौर पर वर्मा का इस्तेमाल करते हैं। ये दिलचस्प है कि गाने के नवे वर्जन ने सदियों पुराने भोजपुरी लोकगीतों के इतिहास ना किवें ताजा कर दिता है। हुण तुसीं इह गीत सुन लिया हैगा या नहीं, तुसीं फटाफट दे नाल दसो ते होर दसो कि किस गीत की तुसी पिछे की कहानी तुसी जानना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे गीत है अजिहे जिन्हां दे पिछे बहुत लंबी कहानी हैगी है। तुसी जरूर दसो ते जुड़ते रहो रेडियो बरसवानी 101.1 FM साडे फेसबुक पेज है जी bersawani@bersawani.com साडी ईमेल आई डी है। सर जिहड़ा भी अपनाउणा हो अपनाओ, पर साडे नाल गल्लबात जरूर करते रहो। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू करो, मैं कल करूंगी मुलाकात। तो रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।
1: On it.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, जब भी मिलती थी मुझसे मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन। ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT, यानी के 132-268 उते कॉल करो। इह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट, ब्रिस्बेन।
3: मैं निकला

0: Michael.
1: Don't. We're married.
0: It's okay, I don't mind.

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन। ओपन्स मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो, जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: जा रही हूँ।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुँचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमांड रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट। आज का

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ओर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ओर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रेस सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। ब्रेस सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 Soccer Tournament presented by Queensland Fiji Football Association. Due to the rainy weather, QBOG ka Sunday 31st May game postpone ho gaya hai. Ab games honge Thursday 4th June se Sunday 7th June tak aur finals Sunday 14th June ko hoga at Acacia Ridge Soccer Club, 174 Mortimer Road, Acacia Ridge 4110. Ground pe chalega full soccer ka tashan, opens, masters and legends. Har match mein energy, excitement aur crowd ka shor. Aur bhai, खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818, किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: बिजली का बिल देख

अप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन क्वाइन कहिंदे हां। अपने बिन क्वाइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उत्ते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is
2: 0400-234-235.
3: Get ready Brisbane. आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026. शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक. एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन. यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज. और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स. रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स. एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले. सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग. तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13. ज्यादा जानकारी के लिए राज राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर. लॉग ऑन टू brisbane.com या मेला कार्निवल.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर. डोंट मिस इट. आज

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है आध्यात्मिक धार्मिक सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में वेदवाणी।

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से आपके लिए वेद

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रजवाणी और आपका अपना शो चांदनी का सफर, और पूरी पूरी कोशिश करूंगी आप सभी का ये सफर बेहतरीन गुजरे और आप सभी सेफ ड्राइव करें और साथ ही साथ एंजॉय करें मेरे इस प्रोग्राम को, कि आपको आज के प्रोग्राम में बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई सुबह, नए जज्बे और ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्स के साथ। वैसे सबसे पहले, इस गाने से पहले आपको एक पॉजिटिव थॉट्स जरूर सुनाऊंगी, ताकि हम हमेशा मोटिवेट रहे। दोस्तों, खुश रहने के लिए सब कुछ परफेक्ट होना जरूरी नहीं, कभी कभी नजरिया बदलना ही काफी होता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव नजरिया ही रखे, ताकि सारा एनवायरनमेंट हमें पॉजिटिव ही लगे और साथ ही साथ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हमें करते रहे। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक। अपने इस प्यारी सी मॉर्निंग को बहुत खूबसूरत बनाते हैं इस गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रजवाणी।
3: आज प्यार की हो
4: डील,
3: डील
4: बोले तो
5: हार्ट हार्ट
6: हमारा यार, सौदा सौदा।
4: ओहो,
3: दोनों डील कर सील,
4: टाइट टाइट, वेरी टाइट।

चलिए फिर इस प्यारी सी सुबह में जान लेते हैं ताजी ताजी खबरें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओलंपिक्स की। तो दोस्तों, ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक्स की तैयारियों को और मजबूत करने के लिए क्वींसलैंड में एक नया एंटी डोपिंग ट्रेनिंग सेंटर जो है वो अनाउंस किया गया है, और ये फ्यूचर एथलीट्स के लिए काफी बड़ा स्टेप माना जा रहा है। वहीं पर क्वींसलैंड गवर्नमेंट ने ई स्कूटर्स रूल में बदलाव किए हैं। अब भाई 12 से 17 साल के जो बच्चे हैं वो सुपरविजन के साथ ई स्कूटर चला सकेंगे। तो आइए फिर इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और हम चलाते हैं अपना ये गीत। सुनते रहिए रेडियो ब्रह्मवाणी।

हाँ जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन। आइए और अपडेट्स जानते हैं। तो दोस्तों, जेट स्टार ने ब्रिस्बेन से क्वींस टाउन यानी कि न्यूजीलैंड के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने का ऐलान किया है। यानी कि जो स्काई लवर्स है उनके लिए ये बहुत ही एक्साइटिंग खबर है। वहीं पर दोस्तों, अगर स्पोर्ट्स का तड़का लगाया जाए तो ब्रिस्बेन ब्रॉनकॉस कैंप में हलचल है। कोच माइकल मैक्यूर ने टीम की परफॉर्मेंस पर नाराजगी जताई है और कुछ बड़े चेंजेस किए गए हैं। आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी, चाय की चुस्कियों के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ फिल्मी तड़का लगाते हैं। दोस्तों, एक्ट्रेस कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म भारत भाग्य विधाता का ट्रेलर जो है वो रिलीज हो गया है। फिल्म 2611 के अनसंग हीरोज को ये ट्रिब्यूट देती है और कंगना एक बहादुर नर्स के रोल में नजर आ रही है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो फिल्म है 2611 मुंबई अटैक्स पर आधारित है। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो प्रेस वाणी।

हाँ जी, इसी के साथ वरुण धवन के जो फैंस हैं उनके लिए बहुत ही मजेदार बात आ रही है। जी हाँ, वरुण धवन की कॉमेडी फिल्म है जवानी तो इश्क होना है भी रिलीज के लिए तैयार है। तो दोस्तों, फिल्म को जो है सर्टिफिकेशन मिल चुका है और फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आपको ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा क्योंकि वरुण धवन जो है वो जल्द ही दिखाई देने वाले हैं स्क्रीन पे। वहीं पर दोस्तों, ओटीटी लवर्स के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था, गुल्लक, पैट्रियट और कई नए शोज जो है वो जून के पहले ही हफ्ते में आ रहे हैं। तो आपका वीकेंड बहुत ही मजेदार जाने वाला है। आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रसवारी।

हाँ जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी, आपके अपने दोस्त और होस्ट आरजी जाने जन के साथ जाने के सफर प्रोग्राम में। जी हाँ, तो इसी के साथ दोस्तों, मुझे एक बात सुनकर या देखकर या कहीं पर पढ़ के बड़ी हैरानगी हुई है। क्या आप सभी जानते हैं इंसान की जो नाक, हाँ जी हमारी ही नाक लगभग 1 ट्रिलियन अलग अलग स्मेल्स को पहचान सकती है। जी हाँ, लगता है ट्राई करना ही पड़ेगा। ट्राई करके सब मुझे जरूर बताइएगा। हाँ जी, आइए इसके साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी।

दोस्तों कैसे हैं आप सब। आ गई मैं फिर से। वैसे आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी को चाय बीच बीच में पीने के लिए क्यों बोलती रहती हूँ या चाय की बात क्यों करती रहती हूँ। वैसे तो मैं भी चाय लवर हूँ, आप भी होंगे या कॉफी लवर होंगे, मैं भी हूँ। एक रिसर्च के मुताबिक ना सुबह सिर्फ 10 मिनट्स धूप में अगर आप बैठते हैं, और धूप में बैठना एक मूड, जो हमारा मूड होता है ना, जो हम कभी कभी स्विंग हो जाता है मूड हमारा, और कभी कभी हमारा दिल कुछ नहीं करता, लेकिन अगर हम 10 मिनट्स अपने आप को धूप में देते हैं, धूप में 10 मिनट के लिए बैठ जाते हैं ना, सच कह रही हूँ, इतना बेटर फील होता है और हमारे मूड को ये बेटर बना सकता है, और एनर्जी तो अलग ही लेवल की बूस्ट होती है। जी हाँ, एक बार ट्राई जरूर करना, क्योंकि रिसर्च की गई है। जी हाँ, तो फटाफट से धूप में जरूर बैठ के देखना, और फटाफट से मुझे मैसेज जरूर करना कि जी एनर्जी बूस्ट हुई, मूड ठीक हुआ या नहीं। तो हाँ जी, इसी के साथ दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रस्मानी, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। याद रखिए, हर नई सुबह एक नया मौका लेकर जरूर आती है, तो इसीलिए हर एक मौके का इंतजार जरूर करें। सुनते रहिए रेडियो ब्रस्मानी।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701। हमारे सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। यूके में ग्रूमिंग गैंग पर छिड़ी बहस, सांसद ने सुनाई पीड़ितों की आपबीती। ब्रिटेन में कथित ग्रूमिंग गैंग और संगठित बाल यौन शोषण के मामलों को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। ब्रिटिश सांसद रूपर्ट लोव ने संसद में कई पीड़ित महिलाओं की गवाही पढ़ते हुए दावा किया कि वर्षों तक नाबालिग लड़कियों का सामूहिक रूप से शोषण किया गया और प्रशासन लंबे समय तक कार्यवाही करने में विफल रहा। लोव ने संसद में कहा कि ये गवाहियां उनके स्वतंत्र जांच अभियान के दौरान सामने आईं। उन्होंने सांसदों से अपील की कि पीड़ितों की आवाज सुनी जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो। बच्चों की सुरक्षा का जोखिम, फ्लोरिडा में ओपन एआई पर हुआ मुकदमा। फ्लोरिडा ने ओपन एआई और उसके सीईओ सैम ऑल्टमैन पर मुकदमा दायर किया। आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने अपने चैट जीपीटी प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के बारे में गलत जानकारी दी। मुकदमे के अनुसार ओपन एआई ने बच्चों को नुकसान पहुंचाया है। फ्लोरिडा ओपन एआई पर कानूनी कार्यवाही करने वाला अमेरिका का पहला प्रांत है। रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य फ्लोरिडा के अटॉर्नी जनरल जेम्स उथमेयर ने फ्लोरिडा की अदालत में ये मुकदमा दायर किया। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। किसी तीसरे की जरूरत नहीं, बालिन शाह की मांग पर भारत का दो टूक जवाब। विदेश मंत्रालय ने भारत नेपाल सीमा विवाद को सुलझाने में किसी भी तीसरे पक्ष की भागीदारी को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ये बयान नेपाल के प्रधानमंत्री बालिन शाह के उस बयान के कुछ दिनों बाद आया है जिसमें उन्होंने विवाद के समाधान के लिए चीन और ब्रिटेन की भूमिका की मांग की थी। खुद को आइसोलेट करें, इबोला पर स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी, भारत में अब तक एक भी केस नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इबोला प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के लिए एहतियात की सलाह जारी की है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत में अब तक इबोला का कोई भी एक्टिव मामला सामने नहीं आया है, लेकिन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बीमारी के लगातार फैलने के मद्देनजर निगरानी और तैयारियां मजबूत कर दी गई हैं। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: रेडियो ब्रिजबानी के श्रोतागण परमानंद से एक शोक सूचना सुनिए। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि ब्रिजबन के सतबीर सिंह जी के पिता जनरल सिंह के देहांत रविवार 31 मई को माटा प्राइवेट हॉस्पिटल ब्रिजबन में हो गई। दाह संस्कार शनिवार 6 जून को 11 बजे से माउंट थॉमसन मेमोरियल गार्डन क्रेमेटोरियम 329 नेसरी रोड होलैंड पार्क में किया जाएगा। शोक व्यक्त करने तथा अधिक जानकारी के लिए आप सतबीर सिंह जी को 04304194544 पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ शोक सूचना।
1: रेडियो ब्रिजवाणी 1701 ब्रिजबन।

0: on 1701 Brisbane. It's your morning drive show with your host Amita and Jatish. सुबह का सफर आपके हम सफर जतीश और अमिता।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी, आपकी अपनी पहचान। और जैसे आप जानते हैं दोस्तों, इस समय मैं सोलो जा रहा हूँ और अमित अभी भी छुट्टी पर है। खैर चलो, आप हमारे साथ दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जी हाँ दोस्तों, आज मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, तो शायद अगर थोड़ा इधर उधर कुछ हो दोस्तों तो माफ़ कर देना, क्योंकि आज मैं आउटसाइड से ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। और आज का जो टेम्परेचर है दोस्तों, कहा गया है 13 and 22 रहेगा और बारिश नहीं होगी। कल के लिए कहा गया है 13 and 20 रहेगा दोस्तों, और नो रेन। सैटरडे को 10 and 21 और संडे को 11 and 22, मंडे को 14 and 22, शायद कुछ बारिश हो। ट्यूसडे को 14 and 23, शायद कुछ बारिश हो सकता है दोस्तों। ठीक है, रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान। रास्ता पर कुछ अभी वैसे तो खास नहीं आया है दोस्तों, लेकिन फिर भी चलो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। और अब थोड़ा कुछ फिजी न्यूज़ की ओर चलते हैं। जी हाँ, फिजी न्यूज़ में कहा गया है कि इज़राइल ऑफिशियली री ओपन्स द एम्बेसी इन फिजी। द इज़राइल एम्बेसी ऑफिस हैज़ ऑफिशियली री ओपन इन सुवा ड्यूरिंग मीटिंग्स विद प्राइम मिनिस्टर सितिवेनी रबुका। इज़राइल ऑल्सो डिस्कस सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर, वाटर सिक्योरिटी, इनोवेशन एंड एंटी ड्रग इनिशिएटिव्स। और गवर्नमेंट रिव्यू सपोर्ट फॉर फिजियन वर्कर्स ओवरसीज। मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज रिव्यूइंग वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन मेजर्स फॉर फिजियंस वर्किंग अब्रॉड अंडर लेबर मोबिलिटी स्कीम्स। द रिव्यू एम्स टू स्ट्रेंथन सपोर्ट सिस्टम एंड वर्कर वेलफेयर। और फिजी क्लाइमेट कमिटमेंट प्रेज्ड इंटरनेशनली। फिजी हैज सबमिटेड इट्स थर्ड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन under the Paris Agreement. Criticals say the plan focuses on reducing emission, improving resilience and addressing climate challenges across key sectors. Fuel prices still remain a major concern. ठीक है, तो भी है वहाँ पर दोस्तों। Health Ministry seeks more support. The Health Ministry is seeking funding and donor assistance to improve health infrastructure and strengthen its response to Fiji's growing HIV challenges. Constitution Review Committee delayed. The planned swearing-in of members of Fiji's Constitution Review Committee has been postponed. Former lawyer and public figure Sevuloni Valenetibua is expected to chair the committee once appointments are finalized. Suva is expected to be around 22 degrees centigrade today with relative cold conditions. Reports indicate some parts of Fiji have been experiencing chilly overnight temperatures recently. Aur chalo dosto, aur kehte hain ki small daily improvements are the key to stunning long term results. Theek hai, ओके okay, कल मैंने आपसे जो क्विज किया था, ठीक है, तो चलो उसी क्विज पर जो है उसका आंसर मुझे एक भी सही नहीं मिला दोस्तों, लेकिन मेरे ख्याल से बड़ा आसान था। हर लम्हा किसी खास शख्स की याद दिल में बसी रहती है, दूर होकर भी वो हर पल करीब महसूस होता है। खैर चलो, एक वर्ड है उसमें जो शायद आपको और बता देता अगर आप कोशिश करते हैं और दोस्तों तो चलो सुनते हैं इस गीत को। हाँ, पल पल दिल के पास तुम रहते।

जी हाँ दोस्तों, ये था गाना जो कंपटीशन था कल, और उम्मीद है ये गाना आपको पसंद आया होगा। रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान। तो चलिए अगला जो गीत है दोस्तों, एक बॉलीवुड गानों में से एक आज भी दिल को छू लेने वाला गाना है जो मैं बजाने जा रहा हूँ। फिल्म शराबी का है और इस गीत को गाए थे किशोर कुमार और आशा भोसले ने, और बप्पी लहरी ने म्यूजिक दिया था और अनजान ने लिखा था। अनजान इनका नाम था कि लिखने वाला अनजान है, मालूम नहीं दोस्तों। खैर आप बताइए, आपको ज्यादा मालूम होगा।

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call Agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: Get ready Brisbane. आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
2: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
3: और चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर अभी आपने रेडियो को ऑन किया है तो चलो, आपका स्वागत हम कर रहे हैं रेडियो ब्रिस्बानी पर। और कुछ वर्ल्ड न्यूज की ओर हम चलते हैं। और यूएस ईरान जो टेंशन है, इट रिमेन्स इन फोकस और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कंटिन्यू अमिड कंसर्न्स अबाउट द ब्रॉडर मिडल ईस्ट सिचुएशन। फाइनेंशियल मार्केट्स हैव रिएक्टेड पॉजिटिवली टू होप्स ऑफ प्रोग्रेस विद ऑयल प्राइसेस ईजिंग एंड ग्लोबल स्टॉक मार्केट शोइंग गेन्स। वर्ल्ड कप फीवा जो है दोस्तों, वर्ल्ड कप फीवा, अभी तो वर्ल्ड कप इधर भी कप हो रहा है। और आप जानते हैं कि टाइम को चेंज किया गया था। ओके, और कहाँ चला गया जी, चलिए। द 2026 फीफा वर्ल्ड कप इज जस्ट डेज अवे विद टीम्स प्लेइंग फाइनल वार्म अप मैचेस। बेल्जियम डिफीटेड क्रोशिया 2-0 विद वेटरन स्ट्राइकर रोमेलू लुकाकू scoring his 90th international goal in a successful return to the national team. Our NBA finals underway. Basketball fans are focused on the NBA finals, where the New York Knicks have reached the championship series for the first time since 1999. They faced the San Antonio Spurs on one of the biggest sporting events of the month. Kya baat hai dosto? Our global economy, markets in Asia and Europe have been encouraged by lower oil prices. Kuch price abhi oil ka niche gaya hai dosto, and hopes that inflation pressures may ease. Investors are watching developments in energy markets and international diplomacy very closely. To chale dosto, agla jo geet hai aap sabhi ke liye, maaf karna, jo geet main bajane ja raha hu dosto, kuch naya और कुछ पुराना गीत है। और चलो, इस गीत को हम सुनते हैं दोस्तों, शायद आपको भी अच्छा लगे।

जी हाँ दोस्तों, फिल्म धुलंधर से इस गीत को आपने सुना, फुल ऑफ एक्शन। और जो लोग ऐसा मूवी नहीं लाइक करते हैं, वे लोग भी मूवी को लाइक किए हैं। जी हाँ, तो चलो, अगर आपने नहीं देखे हैं तो नेटफ्लिक्स पे मेरे ख्याल से इसे आप नेटफ्लिक्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो जाकर देखिए दोस्तों। रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं।

तो दोस्तों चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और तज्ञा सुनते सुनते जी हाँ देखिए करी लीव्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हम जो इंडियंस होते हैं करी लीव्स बहुत खाते हैं, और मेरे पास एक पेड़ है यहाँ पर जहाँ मेरा वर्कशॉप है दोस्तों, वो पेड़ 37 ईयर्स ओल्ड है। ओ क्या बताऊँ मैं, पेड़ की तरह पूरा पेड़ है दोस्तों। लेकिन जितने भी हमारे श्रीलंकन और इंडियन भाई लोग हैं जो इधर रहते हैं,

17 माइल और उसके उधर सब वहाँ से लेकर जाते हैं, और जितना लेकर जाते हैं दोस्तों पेड़ उतना ही अच्छा हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं आप। करी लीव्स सिर्फ खाना खाने का टेस्ट और अरोमा ही नहीं बढ़ाते बल्कि कई हेल्थ बेनिफिट्स भी देते हैं दोस्तों। करी लीव ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स है कहा गया। करी लीव्स में विटामिन ए है, बी है, सी है और ई, ठीक है, साथ ही आयरन, कैल्शियम एंड एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलते हैं इसमें। तो करी लीव देखिए इसका कमाल क्या है। बहुत सारे लोग इसको पीस कर चटनी बनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों। और ब्लड हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि करी लीव्स में आयरन और फोलेट, कल हम फोलेट के बारे में बात किए थे दोस्तों, B9 फोलेट होते हैं जो हेल्थी रेड ब्लड सेल्स जो है बनाने में मदद करते हैं दोस्तों। अगर किसी को आयरन डिफिशियंसी हो तो करी लीव्स एक हेल्थी डाइट का हिस्सा बन सकता है दोस्तों। और इसको आप जैसे मैंने कहा चटनी वगैरह को अच्छी तरह से बना ले और खाने के साथ, और साथ साथ में सैजन यानी बरुंगा का जो लीव्स है उसे भी आप खा सकते हैं इस सैलड। ओके, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि ये आपको शायद रन्स देगा, यानी रन्स का मतलब आप समझ गए ना, पेट अगर साफ करना है तो भाई खाइए आप। डाइजेशन के लिए अच्छा, कई लोग करी लीव्स को डाइजेशन इम्प्रूव करने करने और क्या बोलते हैं जो ब्लोटिंग होता ना फिजी में तो डकार कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ब्लोटिंग या इनडाइजेशन को कम करने के लिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए भी अच्छा है दोस्तों। इसका मतलब नहीं कि आप बस इसी पर निर्भर रहे, आप अगर डायबिटिक है आप तो अपना गोली खाइए भाई। कुछ रिसर्च से पता चला है कि जो ये करी लीव्स ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद कर सकते हैं, और लेकिन डायबिटीज़ की जो दवा की रिप्लेसमेंट नहीं, आप उसको नहीं छोड़े, ठीक है, वो रिप्लेसमेंट नहीं है। और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है इसमें, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो जो सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करते हैं, ठीक है। आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, स्पेशली हमारे जो यंग पीढ़ी के लिए बहुत बुरा हो गया दोस्तों, उनका लाइफ बहुत कॉम्पिटिटिव है। चलो मैं माना हूँ कि हमारे समय में लग्जरी नहीं था दोस्तों, लग्जरी नहीं था, बहुत कम, और लेकिन क्या बोलते हैं इस तरह का स्ट्रेस नहीं हुआ करता था जिस तरह से अभी बच्चों पर स्ट्रेस पड़ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो बच्चे के साथ आप अपने आप से कंपेयर मत करें, उनका भी आप सुने, और शायद उनका कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, स्कूल में बुली बहुत जाता होता है दोस्तों, लेट्स फेस इट, रेशियल ग्राउंड में होता है, नो डाउट अबाउट इट। तो आप थोड़ा सुने बच्चों को, डांटे मत कि नहीं आप अगर नहीं जाना चाहता है स्कूल, पेट में दर्द है तो आप समझ जाइए कुछ होगा ज़रूर, ठीक। तो आप पूछे क्या हुआ है, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, तो आप इन बातों को याद रखें दोस्तों। और हेयर हेल्थ, ट्रेडिशनल रेमेडी में करी लीव्स को जो बालों की सेहत और प्रीमैच्योर ग्रेइंग को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। साइंटिफिक एविडेंस तो अभी नहीं है, लिमिटेड है इस पर, लेकिन ये काफ़ी क्या बोलते हैं पॉपुलर घरेलू नुस्खा है, तो इसको आप अपना सकते हैं। आप बनाइए खूब करी पत्ता का क्या बोलते हैं चटनी। करी लीव्स कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स पर पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। हालांकि और रिसर्च की ज़रूरत है भी इसमें। और आप खाए तो कैसे खाए करी लीव्स, आप तो जानते हैं तड़का लगाते हैं ये सब करते हैं, ताज़ा करी लीव्स को चबा सकते हैं आप फ्रेश, वाह ये तो मैं करता हूँ कभी कभी, पान भी चबाता हूँ। और दाल सब्जी चटनी या सूप में डाल सकते हैं, करी लीव टी भी बना सकते हैं। अरे वाह कैसे बनाएंगे इसको, फ्रेश या ड्राई करके, ये तो आप बताइए अगर आपको पता हो। तो चलिए छोटी सी करी लीव में न्यूट्रिशन का बड़ा खजाना छुपा होता है दोस्तों, और रोज़ाना इसको आप अगर
सही मात्रे में इसका आप यूज़ करोगे तो आपका ओवरऑल हेल्थ काफ़ी ठीक हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखें। मालूम नहीं गाना बजा दिया है ना बजाया, लेकिन चलो मैं नहीं सोचता हूँ।

तो दोस्तों आप सब मेरे चैन के लिए दुआ कीजिए प्लीज। जी हाँ दोस्तों, चैन आए मेरे दिल को। ओके, देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो लगभग 2.8 मिलियन वर्कर्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर है दोस्तों, फेयर वर्क कमीशन ने मिनिमम वेजेस में 4.75% की इंक्रीज किया है और ये 1 जुलाई से लागू होगी। इस कॉस्ट ऑफ लिविंग के प्रेशर जो से जो लोग अभी जूझ रहे हैं इनके परिवारों को कुछ राहत मिल सकती है दोस्तों। मिनिमम वेजेस मुझे भी नहीं मालूम कितना है, शायद $14 कुछ होगा इससे कुछ है दोस्तों, लेकिन इस पर 4.75%, अरे सीधा 5% कर देते यार, खैर चलो। और महंगाई और इंटरेस्ट रेट्स पर नज़र, इकोनॉमिस्ट का कहना है कि फ्यूल प्राइसेस और इन्फ्लेशन के प्रेशर जो है के चलते रिजर्व बैंक पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने का जो बना रहा सकता है दोस्तों, बढ़ाने का ये अभी फिर भी बढ़ा सकते हैं, अभी तो ऊपर गया था शायद। जी हाँ, और कुछ बड़े बैंक्स ने इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट भी अच्छा नीचे किया है। ओके ऑलराइट, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप रेडियो बिजवानी सुन रहे हैं, नंबर है 04300317011701 पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो दोस्तों इस गाना को सुनते हैं और फिर वापस आते हैं। माफ करना, ये इसमें कुछ हो गया है, खैर क्या हो गया, खैर चलो दूसरा जो गीत है दोस्तों, कुमार किशोर कुमार ने गाया इस गीत को।

तो चलिए दोस्तों, पुराना नया का मिश्रण है इसमें, इस कार्यक्रम में। और जैसे मैंने कहा, आज स्टूडियो से मैं नहीं हूँ, मैं सेकंड स्टूडियो से हूँ, अपने मोबाइल स्टूडियो से लेकर आया हूँ प्रोग्राम दोस्तों। और उम्मीद है कि आपको पसंद आ रहा है। अगर नहीं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर है 04300031701।

और देखिए दोस्तों, टुडे आल्सो मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट अमेरिकन स्पेस वॉक। आज ही के दिन दोस्तों, ऑन 3 जून 1965, एस्ट्रोनॉट एड वाइट बिकेम द फर्स्ट अमेरिकन टू वॉक इन स्पेस ड्यूरिंग द जेमिनाई 4 मिशन। कितने लोग को याद है बताइए, आप में से बहुत से लोग उस समय। छोड़ो छोड़ो, कल की बात है, कल की बात पुरानी। जी हाँ दोस्तों, रेडियो मिज़बानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान। और जैसे मैंने कहा, नंबर है 04300037001। ठीक है, ओके, चलो इस गीत को सुनते हैं दोस्तों। रेडियो मिज़बानी आप सुन रहे हैं, आप

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31st में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

चलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का आप में स्वागत कर रहा हूँ रेडियो मिज़वानी पर। और देखिए, इस कार्यक्रम के बाद में आपको याद रहे सताक्षी के साथ हो जाएंगे, और फिर 11 बजे से पंजाबी प्रोग्राम संदेश के साथ, और 3 बजे से निविया के साथ, भूलना मत। और हाँ, सुबह हर सुबह 5 बजे हम लेकर आते हैं क्या बोलते हैं मोटिवेशनल गाना वगैरह। फिर 6 से 7 बजे तक आप चांदनी के साथ रहते हैं, बहुत से लेटेस्ट ऑस्ट्रेलिया न्यूज़, वर्ल्ड न्यूज़ के साथ आप उनका प्रोग्राम सुनेंगे। कुछ बॉलीवुड का भी रहता है इसमें मामला जी। तो आप ज़रूर सुने, यू विल एंजॉय। ठीक है, चलिए अगला जो गीत है, लिखे लिखे जो खत तुझे।

और इस गीत के साथ साथ दोस्तों 8:10 हो गए हैं, यानी 10 मिनट हो गए हैं 8:00, और मेट्रोलॉजिकल एजेंसीज आर मॉनिटरिंग अ पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग एल नीनो इवेंट दैट कुड अफेक्ट वेदर पैटर्न्स वर्ल्ड वाइड, इंक्रीजिंग रिस्क ऑफ फ्लड्स, ड्राउट्स एंड हीट वेव्स इन वेरियस रीजन्स. इसलिए कहा गया है कि हमारा जो विंटर है इस साल उतना बुरा नहीं रहेगा दोस्तों. जी हाँ, ऐसे कह रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है.

जी हाँ दोस्तों, गद्दर टू से इस गीत को आपने सुना है, सुना और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। और अबेया इंजर्ड फोर पीपल इन अ जापानीज रेजिडेंशियल एरिया ऑन ट्यूजडे इन द लाइट केस ऑफ एन अटैक बाय बाय द एनिमल्स इन एन एरिया ऑफ द कंट्री वेयर बेयर हैव इंक्रीजिंगली एनक्रोच्ड ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन इन रिसेंट ईयर्स। अगर कहीं आप गए, आपको बेयर दिखा गया, ये कोल्ड कंट्रीज में ज़्यादा रहते हैं दोस्तों, आपको अगर कभी गए तो बेयर स्प्रे रखना पड़ेगा या तो आपको बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना पड़ेगा, ठीक है, तो ये डर जाते हैं। मैं जानता हूँ। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे और आज एक और गीत सुनते हैं, किशोर कुमार का गाया हुआ गीत है दोस्तों। रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं

0: जी हाँ दोस्तों, ये गाना जो होते हैं पुराने पुराने, ये कभी पुराने नहीं होते मेरे ख्याल से। ओल्ड इन ओल्ड इज गोल्ड में चले जाते हैं ना।
1: मैं पल दो पल का,
0: जैसे ये गाना है दोस्तों, मुकेश ने गाया है।

उनसे मिली नजर की मेरे होश उड़ गए। अरे क्या बात भाई, ये तो अच्छी बात है। और देखिए रेणु प्रसाद, आज आपका जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू यू। और ऐसे से कभी कभी आ जाते हैं नोटिस। और देखिए दोस्तों, जो ये हमारी जिंदगी है ना, ये जिंदगी एक सफर है, ठीक है, एक रेस नहीं है दोस्तों। मैं देख रहा हूँ खासतौर पर लेडीज, माफ करना, आई नो यू पीपल हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू, सारा दिन गुजर जाता यही करने में, लेकिन वी डोंट एंजॉय द लाइफ, यू डोंट एंजॉय बिकॉज काम करना ही पड़ता है, बच्चे हैं, हस्बैंड है। हस्बैंड भाई थोड़ा जागो, उठो, चाय बनाना सीखो, कुछ करो, गिव लेडीज अ ब्रेक टू, क्योंकि लाइफ जीने के लिए भी है दोस्तों। हम मरते रहते हैं, अगर नहीं छोड़ो थोड़ा यहाँ काम कर लें, यहाँ पैसा बना लेंगे, थोड़ा वहाँ बना लूँ, बस यही करते हैं, सुबह उठ कर फिर शुरू कर देते हैं। पैसा ज़रूरी है मैं जानता हूँ, लेकिन कितना चाहिए जी। और आई नो इट्स हार्ड हार्ड टू, अच्छा चलो 100 साल जिएंगे आप, सोच लो उसके मुताबिक आप काम करिए। लेकिन ये जो दौड़ना भागना जिंदगी में, जो ये फिर मौका नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है, बस कुछ दिन में लोग आकर राम नाम सत कह देंगे और फिर क्या फ़ायदा, फ़ायदा क्या हुआ, है कि नहीं? थोड़ा लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए, ठीक है।

जी हाँ दोस्तों, प्यार हुआ, इकरार हुआ, फिर भी दिल डरता है। क्यों दिल डरता है? शायद आपको मालूम नहीं कि आपका पार्टनर कैसे होगा आगे चलकर, इसलिए शायद आप डरते होंगे। जी हाँ, चलो कोई बात नहीं, तो मजाक किया है दोस्तों। कहते हैं कि दुनिया में हर मिनट लगभग 250 बेबीज जन्म लेते हैं। जानते हैं हमें बात, 200 बेबीज हर मिनट जन्म लेते हैं। मतलब जब तक आप ये जो फैक्ट मैं सुना रहा हूँ, जब तक मैं कह रहा हूँ, कई जो हमारे नए मेहमान दुनिया में आ चुके होंगे इतने ही देर में। सोचिए, एक मिनट में 250 बेबीज आर बोर्न। क्या बात है। चले जाते हैं कितना है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतने आते हैं। ठीक है। और आप जानते हैं कि कौन सा एक ऐसा जानवर है जो बहुत ज्यादा सोता है, बहुत रिलैक्स्ड रहता है? ये आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। जो क्वाला है ना, दिन में 18 to 22 hours तक, घंटे तक ये सो सकता है, और शायद इसीलिए उसे दुनिया के सबसे रिलैक्स जानवर में से एक माना जाता है। शायद इसीलिए यहाँ के लोग भी थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हैं, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस आर बिट मोर रिलैक्स्ड देन एनीबॉडी एल्स। जी तो चले दोस्तों, रेडियो ब्रिजवानी आप सुन रहे हैं, और आपका साथ रहेगा, मेरा साथ आपके साथ 9 बजे तक रहेगा। अभी 8:34 हो गया है, और फिर इसके बाद में सताक्षी के साथ आप हो जाएंगे। ठीक है।

अरे भाई तो डायरेक्ट पूछ लिया कि मुझे बॉयफ्रेंड बना ले। वाह क्या बात है दोस्तों, क्या से क्या गीत बना देते हैं लोग। जी हाँ बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन चलिए अगला जो गीत है लता जी ने गाया है इस गीत को।

और दोस्तों समय चला गया बहुत दूर, बहुत जोर से गया है। देखिए समय कैसे जा रहा है दोस्तों, ठीक है। समय पर आप याद रखें बात को जो मैं कह रहा हूँ। एक बार चला गया तो वो फिर लौट कर नहीं मिलेगा दोस्तों, ओके। तो ख्याल रखें इस बात को।

और देखिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक आम इंसान जी हाँ, अपनी जो जिंदगी का जो लगभग 6 महीना ना सिर्फ ट्रैफिक लाइट के ग्रीन होने का इंतजार करते हुए बिता देते हैं। तो जब नेक्स्ट टाइम आप रहना ग्रीन लाइट के ऊपर, वेट कर रहे हैं जब ग्रीन लाइट, तो मुझे भी याद कर लेना दोस्तों कि मैंने क्या कहा था आपसे, ठीक है। और अगला जो और एक बात कह दूं आपसे, कहते हैं कि हम जब मुस्कुराते हैं तो लगभग 17 मसल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और हंसी ना सिर्फ मूड को बदलता है और वो बेहतर भी बनाता है, और साथ में बाकी जो स्ट्रेस हमारे अंदर है उसको भी कम करता है, ठीक है। तो मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, मुस्कुराते रहिए आप।

जी हाँ दोस्तों, शायद दो गीत और देखिए दोस्तों, कल की फिक्र और बीते कल का जो पछतावा, दोनों मिलकर आज की खुशी छीन लेते हैं दोस्तों। और इसीलिए आज को जी भर के जियो, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चीज़ से आप दूर रहो। ऑलराइट, तो चलो एक गीत सुनते हैं। और जैसे मैंने कहा

0: दोस्तों चलते चलते कुछ कह दूं आपसे। और दोस्तों देखिए, बहुत से लोग सुन रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो रेडियो ब्रिजवाणी को आपने अपनाए हैं। फैमिली रेडियो है दोस्तों, कभी मजाक कर लेता हूं, कभी मालूम नहीं मूड में क्या चलता है। जो मैं कहता हूं जो बाहर से है मैं वही अंदर से हूं दोस्तों। और क्योंकि समय तो बहुत कम है हमारे पास और जाना है एक दिन, तो क्या फिर यार, याद रखिए ज़िंदगी हर रोज़ एक नई शुरुआत का मौका देती है दोस्तों। मुस्कुराते रहे, अच्छा बहुत इम्पोर्टेंट है, मुस्कुराते रहे, खुश रहो और अपनों के साथ प्यार और अपनापन बांटते रहिए, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। अगर कुछ हो गया मिस्टेक तो माफ़ कर देना, तो कोई बात नहीं। चलो मैं हूँ जतीश पूरन आपका दोस्त, कल फिर लौटूंगा दोस्तों। और धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया है और यही उम्मीद रखता हूँ कि आपको आज का जो प्रोग्राम है पसंद आया होगा। और कल और चलो फिर भी कल भी कुछ और करेंगे, शायद और भी अच्छा लगे प्रोग्राम कल का। तो अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, मिलते हैं फिर। हैव अ लवली रेस्ट ऑफ द डे, कीप सेफ, प्लीज बी सेफ, बी काइंड। नमस्कार, खुदा हाफिज़।
1: आपको हमारी कसम लौट आई।

गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर से सुबह के ताजा तरीन सफर में कुछ मोटिवेशनल बातों और प्यार भरे गीतों का साथ लेकर आ गई है आपकी अपनी हम सफर सताक्षी। जी हाँ, रेडियो प्रस्वानी पर एक बार फिर से आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ पूरे 2 घंटे आपका अपना इट हैपेंस। दोस्तों, सुबह की ताजगी में अगर अपनों का प्यार घुल जाए तो उस सुबह की ताजगी और भी निखर उठती है, और आज भी ऐसा ही साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए, क्योंकि बातें बहुत ही खास हैं, लेकिन उससे भी खास हैं आज के गाने, तो इन गानों के साथ हम प्यार भरी बातों का ये सफर यूं ही जारी रखेंगे। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर सताक्षी के साथ आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। और चलिए अभी आगे बढ़ते हैं इस अगले ट्रैक के साथ। के प्लसिंग टू रेडियो प्रस्वानी, सताक्षी आपको एक बार फिर से कहती है गुड मॉर्निंग।

मॉर्निंग रेडियो प्रसवानी पर आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। वैसे इसके पहले कि हम सफर में आगे बढ़ें, हम रोज की तरह आज भी अपनी रीत निभाना नहीं भूलेंगे। जी हाँ, जिनका भी हैप्पी बर्थडे है, अपना जन्मदिन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। भाई हमारा जो बर्थडे होता है ना, वो हमें ये याद दिलाता है कि हम खुद के लिए कितने स्पेशल और खास है, राइट? तो आज आप भी अपने खास होने को सेलिब्रेट कीजिए, इस अपनेपन को सेलिब्रेट कीजिए जो आपके अपने आपको मैसेजेस, विशेस और कॉल्स के जरिए देने वाले हैं। एंजॉय कीजिए आज के दिन को, और जिनका आज है एक दूसरे के साथ बंधने का दिन, यानी कि वेडिंग एनिवर्सरी है जिनकी आज, उन सबको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। जिंदगी के कदम से कदम मिलाकर यूं ही जिंदगी की राहों पर चलते रहिए। और जिनके लिए भी आज का दिन स्पेशल और खास है, यानी आज कुछ खास होने वाला है या आज वो कुछ खास करने वाले हैं या एक्सपेक्टेशंस हैं आज के दिन से कुछ, उन्हें उन सबको ऑल द बेस्ट। आप सबके लिए डेडिकेट करती हूँ ये अगला ट्रैक। के प्लस टू रेडियो ब्रसवानी, मेरे साथ सुनते रहिए। इट हैपेंस।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। OMSOG, caring with dignity.
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेंबर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपको, आप सुन रहे हैं इट हैपेंस, आपके साथ है सताक्षी। जी हाँ, आपके ब्रेकफास्ट शो को इस वक्त आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। पैसा, पैसा जब हमारे पास होता है तो हम अक्सर बहुत सारी प्लानिंग करते हैं ना पैसे को लेकर। यहाँ खर्च करेंगे, ये शॉपिंग करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। देखिए, पैसे को लेकर अगर आपकी बहुत सारी नीड्स हैं और वो जेन्युइन है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप अननेसेसरी पैसा खर्च कर रहे हैं तो आज आप पैसे को खर्च कर रहे हैं, कल पैसा आपको खर्च करेगा। याद रखिए कि पैसा नमक की तरह होता है, जो जरूरी तो है मगर जरूरत से ज्यादा आ जाए या जरूरत से ज्यादा आप खर्च करने लगे तो जिंदगी का स्वाद बिगड़ जाता है। इसलिए पैसे की वैल्यू को समझिए, जरूरत से ज्यादा पैसा मत खर्च कीजिए और पैसे को बहुत संभाल कर रखिए। और बहुत सारी जरूरतें जो आज पूरी हो रही हैं, जरूरी नहीं है कि वो कल भी उसी तरह पूरी हो पाए। आइए एक और ट्रैक सताक्षी के साथ सुनिए और सुनते रहिए इट हैपेंस आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर।

इच्छापन सुन रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर, आपके साथ है सदाक्षी। अक्सर कहते हैं कि ड्रिंक करना सेहत के लिए बुरा होता है ना। मैं भी ये कहती हूँ भाई, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि मतलब आप कहाँ ही पहुंच जाते हैं, भाई सुबह का वक्त है। लेकिन एक जो बहुत प्रैक्टिकल बात है कि अगर आपको किसी इंसान को समझना है, उसके दिल में क्या है, उसकी जबान पर क्या रहता है और किस तरह से वो आपके लिए सोच रखता है या क्या वो आपसे चाहता है, अगर जेन्युइनली आपको उसके बारे में जानना है, तो जब वो नशे में है ना, तब आप उससे बात कीजिए। वो किसी ने गलत नहीं कहा है कि नशे में इंसान सच बोलता है, और किसी भी इंसान का कैरेक्टर जो है वो तभी सामने आता है जब वो नशे में होता है। और मैं तो कहती हूँ कैरेक्टर और उसकी असलियत दोनों तब सामने आते हैं जब वो है ना, हाँ, नशे में होता है और आपसे बात करता है। तो ये मत सोचिए कि अगर अगला इंसान नशे में है तो आपको उससे बात नहीं करनी है। भाई थोड़ा सा कुरेदिए, आपको पता चलेगा कि उसका आपको लेकर के लेवल क्या है। आइए एक और ट्रैक प्लान मेरे साथ सुनिए और सुनते रहिए। इट हैपेंस, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Beyond what you see, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright. Transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are. Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number.
5: दोस्तों कानों की हैट्रिक, इट हैपेंस में ये वो टाइम होता है जहां तीन बैक टू बैक ट्रैक्स हम एंजॉय करते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज के वो तीन बैक टू बैक ट्रैक्स जो बने हैं गानों की हैट्रिक का हिस्सा। और अभी ये पहला ट्रैक है आपके लिए।

गानों की हैट्रिक रितु प्रसानी 1701 एम पर इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं। गानों की हैट्रिक के इस लास्ट ट्रैक को एंजॉय कीजिए। इसके बाद इट हैपेंस में होंगी आपके साथ ढेर सारी बातें। केप लिसनिंग टू रेडियो ब्रसवानी, आपके साथ है सताक।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

रेडियो प्रस्थानी पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं ठापन्स, आपके ब्रेकफास्ट शो को आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार हम अभी तो बुरा कर रहे हैं ना, अभी मतलब अभी बुरा करके हमें शांति मिल रही है, अच्छा लग रहा है, ये हमारा फायदा हो रहा है, कब कर्म हमारा हिसाब करेगा देखा जाएगा। तो देखिए आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज आपको खुशी मिल रही है, आज आपकी जरूरत पूरी हो रही है और कल कर्म जो करेगा वो देखा जाएगा। भाई देखिए कर्म तुरंत आपको सबक नहीं देता है, वो चुपचाप इंतजार करता है और उस दिन आप पर वार करता है जिस दिन आपको सबसे ज्यादा एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो आपके लिए वफादार हो। बुरे कर्मों का जो जहर है ना दोस्तों, वो धीरे धीरे चढ़ता है और असर तब दिखाता है जब इलाज का वक्त निकल चुका होता है। जब आप सबसे ज्यादा बेफिक्र हो जाएंगे ना, ठीक उसी पल वो आपका हिसाब करेगा। और इसलिए ये मत सोचिए कि जब हिसाब होगा तब देखा जाएगा। मैं तो ये मान के चलती हूँ भाई कि स्वर्ग और नरक दोनों यही हैं, हिसाब इसी दुनिया में होता है। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ एंजॉय कीजिए और मेरे साथ यूं ही सुनते रहिए ठापन्स जी। हाँ, कुछ बातें जिंदगी की, कुछ कर्मास की और कुछ आपके अपनों की। के प्लस निक टू रेडियो ब्रिस्वानी।

रेडियो प्रेस वाणी पर सदाक्षी को सुन रहे हैं आप और एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ कुछ बहुत ही गहरी और प्यारी बातें। आप एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ इट हैपेंस, आपका अपना ब्रेकफास्ट शो, क्योंकि ब्रेकफास्ट शो पर की गई बातें पूरे दिन का हिस्सा बन जाती हैं। ब्रेकफास्ट शो पर की गई बातें आपकी एनर्जी को बढ़ा देती हैं। ब्रेकफास्ट शो पर की गई बातें आपको दिन भर मोटिवेट रखती हैं और आपको याद रहता है कि आपका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ वो ड्रीम है जिसे आपने पूरा करने की कसम खाई है। वो इंसान आपकी जिंदगी में हो ना हो जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, लेकिन मैं हूं ना, और मेरी ये पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको जिंदगी में आगे ले जा सकूं और वो जो एक पुश चाहिए आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो दे सकूं। और कहीं भी जिंदगी में अगर आपको ये लगे कि आप टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, तो वो मैं बहुत देर तक आपको फील ना होने दूं। एटलीस्ट जब आप इट हैपेंस में हैं तो मेरी यही कोशिश है। तो चलिए अपनी इस कोशिश को थोड़ी सी और हवा देते हैं और इस अगले ट्रैक के साथ आगे लेकर चलते हैं आपको। हमारे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस और बने रहिए आपके अपने रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM पर। People.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है। क्वालिटी प्रोडक्ट,